ज्ञान, बुद्धि और शुभता के प्रतीक श्री गणेश का आशीर्वाद जिस पर हो उस भक्त की सभी राहें आसान हो जाती हैं।

जिस घर में माँ अंबे का नाम लिया जाता है, वहाँ खुशियाँ, शक्ति और विश्वास हमेशा बना रहता है।

साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किछ है जिस देही सो पावे। वी उस परमात्मा दे घर दे विच सब कुछ जड़ा आ ओ मिलदा है। सिर्फ ते सिर्फ जड़ा सा असी जड़ा आ अगर अपने मन दा आनंद उस परमात्मा तो मंगीए तो उस मन दे आनंद दी जेकर सानू प्राप्ति हो जाती है तो उस परमात्मा दे घर विच हर एक चीज़ जो मौजूद है वो परमात्मा थानू आप दे सकता है। थानू आप जड़ा आ वो थोड़ी झोली दे विच वो चीज़ां पै सकदियां ने। सिर्फ ते सिर्फ उस परमात्मा दा हमेशा

जिस घर में माँ संतोषी जी का नाम लिया जाता है, वहाँ खुशियाँ और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है।

102.7 FM रेनबो 103.6 MHz ते तुसी सर्वन कर रहे हो भगती रस नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम त्याईए, प्रभु दे नाम ध्यान दे नाल भाव परमात्मा दे नाम सिमरन दे नाल सानू असल जीवन मिलता है। नाम तो बिना इंसान दी आत्मक मौत समझी जाती है, इसलिए कहा जाता है कि इंसान नू परमा

नमस्कार, सवेर दे 7 बज चुके ने। FM रेनबो ते वेला हो गया है इस वक्त FM न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अते नीदरलैंड्स विश्व संकटां दरमियान एक भरोसेमंद पारदर्शी अते भविख लई तैयार सप्लाई व्यवस्था बनाउण लई मिलके काम कर रहे ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 प्रीख्या का पेपर लीक होने के मामले में एक होर मुख मुलजम मनीषा गुरुनाथ मंदारे नू पुणे तो गिरफ्तार किया है। सिक्ख्या मंत्रालय ने देश विच स्कूली पढ़ाई विच छड्डन वालियां माफ करना स्कूली पढ़ाई विच छड्डन

अपने हर ख्वाब में अक्सर तुझे पाया है, अपने हर ख्वाब में अक्सर तुझे पाया है, अपने जहाने दिल में सिर्फ तुझे बसाया है। हिसाबे मोहब्बत कभी पूछना ना मुझसे, हिसाबे मोहब्बत कभी पूछना ना मुझसे, क्योंकि खुद को खोकर मैंने तुझे पाया है, क्योंकि खुद को खोकर मैंने तुझे पाया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स ते नाल दी नाल न्यूज ऑन AIR ऐप वाले दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं कहा जी, स्टूडियो घड़ी से समा 7:04 ते 35 सैकेंड हो चुके ने, ते तुहाडे सब दा फेवरेट वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर लैके तुहाडा दोस्त ललित सोनी हाजिर हो चुके है जनाब, और मेरा ते तुहाडा साथ बनिया रहेगा ठीक सवेर दी 10 बजे तक। सो बहुत सारिया गल्लां बातां होणगियां, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे लई अज लैके आए हैं। नाल दी नाल गीत संगीत दा तड़का भी लगेगा, और थोड़ी संडे वाली आज दी इस मॉर्निंग नू होर भी खूबसूरत, होर भी एनर्जेटिक बनाने दी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। सो संडे वाली मॉर्निंग दे विच एक बारी फिर तो थोड़ा स्वागत, प्यार भरी सत श्री अकाल। सो संडे वाला खूबसूरत दिन दा आगाज हो चुका है, खूबसूरत सजरी सवेर दा आगाज हो चुका है, पंछियां दी चहचहाट दे नाल और ठंडियां हवावां दे नाल अज दी खूबसूरत सजरी सवेर थानू जगा रही है, थानू बुला रही है, और ये दस रही है कि अज ओ दिन है जिस दिन तुसी अपने आने वाले दिनों की प्लैनिंग करनी है, और अज ओ दिन है जो तुसी अपने खास मित्र सज्जणा दे नाल मुलाकात करनी है, गल्लां बातां करनियां ने, परिवार नूं समां देना है, और किते घूमण भी जा सकदे हो। सो बड़ियां खुशियां, बड़े चा जिहड़े ने संडे वाला दिन लैके आउंदा है। और ठीक 8:30 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच साडियां गल्लां बातां इस तरह ही चलदियां रहणगियां, और 8:30 बजे होणगियां पंजाबी दे विच खबरां, और 8:40 ते होएगा म्यूजिकल बैक टू बैक दा सफर अड्डी टप्पा, जिहदे विच तुसीं सुणोगे पंजाबी बीट म्यूजिक नाल लबरेज गीत, और 9 बजे आगाज़ होएगा तुहाडे और मेरे सब दे दिलां दी धड़कन पंजाबी विरसे दीआं बातां पाउण वाला प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दा, जिथे तुसीं दिल खोल के दिल दीआं गल्लां कर सकदे हो, और अपने दिल दी गल साडे नाल सांझी कर सकदे हो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in

जी दोस्तों, संडे वाली खूबसूरत सजरी सवेर का आनंद तुसी मान रहे हो FM रेनबो दे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच अपने दोस्त ललित सोनी दे नाल। और दोस्तों, जिंदगी दी भज दौड़ विच असी इन्ना ज़्यादा उलझ गए हाँ कि साडे कोल अपने आप दे लई, अपने शरीर दे लई और इस शरीर का ख्याल रखण दे लई समा है ही नहीं। और अपनी सेहत नूं नज़रअंदाज करके असी बीमारियां नूं सदा दे रहे हाँ ते अपनी जिंदगी नूं भी चंगी तरह मान नहीं रहे। ते कहिंदे ने कि जेकर तुहाडा दिल तंदुरुस्त होवे तां जिंदगी होर भी खूबसूरत लगती है। तो अज असी विश्व हाइपरटेंशन डे मना रहे हैं और एक अजिहा दिन है जो सानू याद दिवाउंदा है कि हाई ब्लड प्रैशर चुपचाप किवें साडी सेहत नूं नुकसान पहुँचा रहा है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज वाले दोस्तों एक बार फिर तो प्यार परी सत श्री अकाल। मैं क्या जी, हुण जरा अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी जी चक दियो क्योंकि पैन लगा है जनाब रोला रप्पा। प्रोग्राम शुरू होन जा रहा है अड्डी टप्पा। बैक टू बैक पंजाबी गीतों का आनंद तुसी माण सकते हो ठीक 9 बजे तक। और ठीक 9 बजे आगाज होएगा सब दे दिलां दी धड़कन दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम दा, जिथे तुसी अपने दिल दीआं गल्लां साडे नाल सांझीआं कर सकदे हो। 9855101027 नंबर है। चंगा लिखदे हो, चंगा गाउंदे हो या फिर किसी का लिखिया गीत कविता नज़म थानू पसंद है, थोड़े दिल दे बेहद करीब है, पंजाबी विरसे नाल संबंधित कोई भी थानू इतिहासिक जगह जिहड़ी तुसी देखी हुई है और थानू लगता है कि उस जगह दे उपर बाकियां नू भी जाना चाहिए है, तो तुसी उहदे बाबत भी साडे नाल गल कर सकते हो। बाकी जेकर थोड़े कोल कोई बुजारत है, कोई चुटकला है, तुसी उह भी साडे नाल सांझा कर सकते हो। प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच ठीक 9 बजे। सो बैक टू बैक पंजाबी गीतों का आनंद माणते हैं, तो मिलते हैं ठीक 9 बजे प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच।

नमस्कार, सवेर दे 9 बज चुके ने। एफ एम रेनबो ते वेला हो गया है एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते नीदरलैंड दे प्रधानमंत्री रोब जैटन विचकार विचार वटांदरे तो बाद दोवां मुल्कां ने दुवल्ले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली दे पद्धर तक वधाउण लई सहमति प्रगट कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज स्वीडन दे 2 दिनां दौरे ते गोथेनबर्ग पहुंचणगे। मध्य प्रदेश विच उच्च अदालत दे फैसले तो बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेखण विभाग ने भोजशाला विच हिंदुआं दे निर्विघन दाखले दी इजाजत दित्ती है। सरकार ने चांदी दी दरामद ते पाबंदी लगाई, इस नूं मुक्त तों पाबंदीशुदा श्रेणी विच रख्या। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी विच हवाबाजी टरबाइन ईंधन ते वैट नूं 25% तों घटा के 7% करन दा फैसला लिया है। पंजाब चोण कमिशन ने नगर निगम चोणां नूं आजाद निरपक्ष अते शांतिपूर्ण ढंग नाल नेपरे चढ़ाउण लई IAS अते सीनियर PCS अधिकारियों नूं जनरल ऑब्जर्वरां वजों नियुक्त कीता है। खेती विरासत मिशन वालों मुक्तसर फिरोजपुर अते फरीदकोट जिलों च पराली संभाल अते वातावरण सुरक्षा लई 10 दिना पराली संभाल चेतना यात्रा की शुरुआत। मौसम विभाग ने पंजाब अते हरियाणा विच कई थावां ते 22 जून तक गर्मी पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट विच कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीती रात गुजरात टाइटन्स नूं 29 दौड़ां नाल हराया। अते बैंकॉक विच थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट च मर्द डबल्स फाइनल विच अज भारत दे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी अते चिराग शेट्टी दा मुकाबला इंडोनेशिया जोड़ी नाल होवेगा। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਜ਼।

हाँ जी, की हाल चाल ने? वीकेंड वाले वाइब हुए थे तो हाडे नाल गल्ला करन दा मौका मिल जाए तो बहुत ही वधिया लगता है जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर तो पुछांगी जी, की हाल चाल ने? आई होप तुसी सारे दे सारे बहुत ही वधिया होवो, इंजॉय कर रहे होगे इस वीकेंड नू। ते अज आंदिया ही, यानी कि मैं हाँ जी थोड़ी अपनी साक्षी ते प्रोग्राम है जी गीत बहार, जिथे गीतां दी बहार जिहड़ी है तुहाडे वास्ते लगन वाली है। बहुत सारे जिहड़े वधिया वधिया गाने ने प्लेलिस्ट दे विच शामिल होए ने। पर प्रोग्राम की शुरुआत दे विच आंदिया ही एक दिल दी गल जे तुहाडे नाल कर लीती जावे ना तो मैनू बहुत ही वधिया लगता है। होप तुहानू भी वधिया लगता होएगा। कहिंदे कि ड्रीमिंग इज़ द बिगनिंग ऑफ गैटिंग एवरीथिंग यू वॉन्ट। सो सपने देखना जिहड़ा हुंदा ना अपने आप दे विच, तुसी जिंदगी च जो चाहते हो ना उहदी शुरुआत सपने वेखन तो ही हुंदी है। तो सपने जिहड़े ने जरूर देखने चाहिए ने। तो हुण जिहड़ा टाइम है ना 10 बज चुके ने, 6 मिनट हो चुके ने, 38 सैकेंड हो चुके ने स्टूडियो की घड़ी दे विच। बेशक अज वीकेंड है तो मैनूं लगता हुण सानूं अपने रात वाले सपनों तो बाहर आके दिन के जिहड़े सोहणे सोहणे सपने ने खुली अक्खां नाल देखण वाले वो देखने चाहिए ने। तो इस संडे वाली वाइब नूं फुल ऑन इंजॉय करना चाहिए। सो इंजॉयमेंट की जे गल की जाए तो सब तो पहले साढ़े दिमाग दे विच भाई म्यूजिक ही आंदा है। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते प्यारे जी म्यूजिकल ट्रैक दे नाल, जो कि आतिफ असलम की आवाज़ दे विच हैगा। मैं क्या फिर गर्मी है, थोड़ा शरबत वरबत तो जिहड़ा हैगा वो जरूरी ही है। तुसी करो जी प्यारा जी म्यूजिकल ट्रैक इंजॉय। इदा ही बने रहो 102.7 FM रेनबो, दिल से दिल तक। मेरे यानी कि साक्षी दे नाल ते प्रोग्राम चल रहा जी गीत बहार।

वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन के तहत उसी 102.7 FM रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार ते मैं हाँ थोड़ी अपनी साक्षी थोड़े नाल बिल्कुल जी मन जड़ा हुंदा है बहुत ज़्यादा चंचल हुंदा है कहंदे मन के जीते जग जीते सो अगर तुसी भी दुनिया नू जितना चाहते हो तो सब तो पहले अपने मन नू जड़ा हैगा ना वो कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैगा गल चल रही सी कि अज असी मना रहे हैं टैलीकम्यूनीकेशन डे यानी कि 17 मई नू ते वैसे सोचने वाली गल हैगी है एक टाइम वह भी सगा जदों ना मोबाइल सगे ना इंटरनेट सगा तो सानू एक दूजे नू मैसेज भेजन तो बाद भी किन्ने किन्ने दिन इंतजार करना पैंदा सगा कितने ना कितने हर चीज़ जिहड़ी हैगी अपने आप दे विच एडवांसमेंट भी लेके आती है पर जे पुराने टाइम की गल करिए तो उदों कितना पेशेंस हुंदा सी साडे विच जवाब दा महीनिया महीनिया इंतजार करना चिट्ठी मिलन ते उहदा वेट करना कि मिली होएगी कि नहीं मिली होएगी तो हुण अज

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

वाह जी वाह, सच्ची ठीक क्या ही बात है। ट्यूनिंग के तहत 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार, ते मैं हाँ जी तुहाड़ी अपनी साक्षी तुहाड़े नाल। भाई कुछ लोग होंगे ने जो वीकेंड पे बिल्कुल ही सुस्ती पा के बैठे होंगे ने, हूँ तक तो मैं क्या जी मुश्किल दे नाल उठे ही होंगे। तो कई होंगे ने जो अपनी पूरे हफ्ते वाली रूटीन जी है ना इक्को जी ही सैट करके रखते हैं, क्योंकि उन्हों का मनना है कि वीकेंड वाले दिन भी वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ताकि सवेरे सवेरे उठ के और टाइम से रेडी हो के मैं क्या जी शाही जोड़ा अपना पा के अपनी फैमिली के नाल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो आई होप तुसी भी सारे उठ चुके हो ते प्रोग्राम जेड़ा है गीत बहार इस टाइम तक वधिया तरीके दे नाल इंजॉय कर रहे हो। आज ते दिन दी असीं गल कर रहे हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जेड़ा है असीं सैलीब्रेट कर रहे हैं। वैसे इंडिया दी गल करिए तां इंडिया दे विच वी जेड़ी डिजिटल रेवोल्यूशन जेड़ी है ना तेज़ी दे नाल आई है। हुण चाहे पिंडां दी गल होवे या शहरां दी गल होवे, दोनों जगह ते इंटरनेट कनैक्टिविटी जेड़ी है ना वो काफ़ी इंप्रूव हो रही है। नाल ही नाल जे गवर्नमेंट भी जिहड़ी हैगी है डिजिटल इंडिया कैंपेन दे थ्रू हर सिटीजन नू डिजिटल सर्विसेज दे नाल जोड़न दी अपनी जिहड़ी कोशिश है पूरी पूरी कर रही है। वैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने मतलब इंटरनेट ने मतलब बहुत सारिया चीज़ा जड़िया ने इंटरटेनमेंट दे नाल भी जुड़िया हुई हैं बदल दती हैं। आज असी लाइव स्पोर्ट्स देख सकते हैं, मूवी या म्यूजिक होवे अपने मोबाइल ते किसी भी तरीके दे नाल कुछ भी जदों हैगा साडा दिल करे कोई गाना सुनन ते लाइव स्ट्रीमिंग जड़ी हैगी ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जड़े ने ते ऑनलाइन रेडियो ने इंटरटेनमेंट नू एक होर भी ज़्यादा इंटरस्टिंग बना दिता। सो इन्हां दे विच्चों एक जे असी अपनी गल करिए ऑल इंडिया रेडियो की गल करिए न्यूज़ ऑन AIR के थ्रू हूँ जिम्मे साढ़े तुम FM रेनबो जलंधर सुनना चाहते हो, तो जे तुम जलंधर तो कित बार भी जा रहे हो ना छुट्टियों के भी कोई टेंशन वाली गल नहीं है। अपने फोन के न्यूज़ ऑन AIR जी ऐप हैगी है प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, तो जलंधर तो बहर जाके भी जोड़े साढ़े प्रोग्राम है ना वो बेफिक्र होकर इंजॉय कर सकते हो। फिलहाल तुहाडे लिए आ रहा जी एक गीत तुहाडे रेडियो सैट ते।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अरब डॉलर का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों

वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का छठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in India-Sweden relations. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate.
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम सब जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पवन ऊर्जा का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की बदलती और मजबूत होती स्थिति क्या है और क्या नए बदलाव हो सकते हैं उसका उल्लेख किया है। आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें पवन ऊर्जा का उल्लेख है।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूँ जो अदृश्य है लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि ही वायुर्वै समष्टि है। अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूअल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।
4: तो इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए पवन ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञों को। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, साथ ही आप पवन

0: ऊर्जा विभाग के निदेशक भी हैं। डॉक्टर प्रवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद, धन्यवाद नीलम जी।
0: और साथ ही हमारे हैं यहाँ पर अतिथि ओम तनेजा जी। आप उद्यमी हैं और आपका अनुभव जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आप शामिल रहे हैं और भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी।
2: धन्यवाद।
0: जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जिसमें से कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि हवा से तो हम सबका रिश्ता है, लेकिन हम इसे ऊर्जा क्यों कहते हैं? पवन ऊर्जा का सही अर्थ क्या है? और ये मैं जानना चाहती हूँ प्रवीर जी आपसे।
1: ऊर्जा हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई भी काम को सहज कर दे या कोई भी काम को करने में हमारा सहायता करे
0: जी।
1: तो उसमें पवन ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा है। और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराने हैं। अगर हम मानव के इतिहास में देखें कि कौन सा ऊर्जा को हम पहले इस्तेमाल करना सीखे, तो पवन उसमें से अग्रणी है। पुराने जमाने में पहले पवन के माध्यम से हमारा जहाज चला करते थे, पवन के माध्यम से पवन चक्की चलाया करते थे जिसमें उन्होंने ग्राइंडिंग करना शुरू किया। बट अभी मॉडर्न एज में हमने वही पवन को इस्तेमाल करके उससे हम बिजली बनाते हैं। और बिजली ऊर्जा हमारा क्या सहायता करता है ये शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर घर में प्रति क्षण हम बिजली का उपयोग करते हैं
0: जी।
1: तो वही बिजली हम पवन से बनाते हैं, तो वही ऊर्जा फिर हमारा प्रति काम में हमें सहायता देती है
0: जी। इसलिए हम पवन की जो शक्ति है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं जी। हमने अक्सर वीराने में विशाल पंखे घूमते हुए देखे हैं और कई बार मन में सवाल आता है कि ये कैसे काम करते हैं, यहाँ एकदम वीराने में सुनसान जगह में इनकी देखरेख कैसे हो रही है, ये यहाँ पर क्यों है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ओम जी, जो शुरुआत है पवन ऊर्जा की वो कैसे होती है, जिन्हें हम टर्बाइन कहते हैं या विशाल पंखे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं?
2: अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये पवन ऊर्जा कब से कहाँ से शुरू हुई है। ये असल में 1960 के दशक से ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे CSIR के और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज के, जिन्होंने शोध करके हमारे यहाँ पवन ऊर्जा कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसमें किया था। तो पवन संसाधन जो हैं उसके लिए हमारी एक साइंटिस्ट थी अनामनी जी, जिन्होंने बहुत कार्य करके और पूरा उसका जो है एक संकलन किया है और उस संकलन को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में डाल के और जो आज के दिन हमारे लिए एक किस्म से बाइबल जिसे कहते हैं वो है। पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, वो अलग चीज़ है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका था। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे पहला जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया, और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था, उसके बाद उसका नाम बदल के हमने MENS किया और उसके बाद आज के दिन वो MNRE कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब भारत में इस नवीनकरणीय ऊर्जा जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
0: जी।
2: पवन ऊर्जा का जल्दी फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
0: जी।
2: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता है, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपये का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई कर

0: करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था, फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
1: जी,
0: जो हमारे उस जगह पर जहाँ हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
1: जी,
0: जो ये बताता है कि किस जगह पे हमें हवा का पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
1: जी,
0: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
1: जी।
0: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
1: जी।
0: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइन्स जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए एक अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी
1: जी। तो इस बारे में हम और भी जानेंगे, अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
0: आई थिंक मेरे हिसाब से ये हवा के साथ साथ
1: जी, हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभलना,
2: हवा के साथ साथ,

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं, और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है, मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद की जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको
0: तीली लगा के रखिए
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी,
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसको हम ब्लेड बोलते हैं, जो पंखा आप बताए उन्होंने तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है जिसके वजह से जब हवा चलता है वो ये हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी,
1: और कभी भी बिजली पैदा करने

0: के लिए हमें जो जेनरेटर है उसी जेनरेटर के अंदर जो स्टार्टर है या रोटर है उसी को घुमाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। वो पंखा जब घूमता है तो वही घुमावट का जो शक्ति है वो जेनरेटर में जाता है और जेनरेटर से बिजली पैदा होता है, फिर वही बिजली को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर वही शक्ति हमारा घर पे बिजली बन के हमारा जो आमतौर के जिंदगी में हमारा डेली लाइफ में हमारे लिए, चाहे आपका लाइट हो, घर का पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो,
1: जी
0: वो हर जगह पे काम करता है।
1: जी, तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है और इनफैक्ट आज हम देख प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है।
1: जी,
0: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता दी जाती है वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो, तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था तो इसको डेमोंस्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट, तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था, फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम जीबीआई कहते हैं, जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जैसे आप एक जेनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा, बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उभर चुका था। तो 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं।
1: जी,
0: मतलब इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जितना हमें बिजली चाहिए होता है मंत्रालय के तरफ से, हमारा चार हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, NTPC है, NHPC है, SJVN है, तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
1: जी
0: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते में मिलता है।
1: जी,
0: जो हमारे डिस्कॉम को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो स्टेट्स में काम करते हैं, और ये बिजली अल्टीमेटली उन्हीं को खरीदना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे उसको उपलब्ध कराते हैं।
1: तो इसके लिए बिडिंग होती है।
0: बिल्कुल
1: जी, और मैं जानना चाहूंगी कि जगह का चुनाव कैसे किया जाता है कि कहाँ पर टर्बाइन्स जो हैं वो लगेंगी या इससे जुड़ी हुई रिसर्च कहाँ पर की जाएगी, तो उस जगह का चुनाव कैसे करते हैं?
0: हमें मंत्रालय को इसमें तकनीक सहायता देने के लिए हमारा एक सेंटर है जिसको हम पहले इसका नाम था सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, CWET के नाम से शुरू हुआ था सन 2000 में, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो चेन्नई में स्थित है।
1: जी,
0: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहाँ पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है, और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर से, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक।
1: जी,
0: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का, और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा। बट ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया, अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है,
1: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है,
0: तेज होता
1: जहाँ
0: है।
1: हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है, और कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो, आसपास खुली जगह हो, तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे मास्क लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जब जगह का भ्रमण करते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं।
1: जी,
0: जहाँ पे कंटिन्यूस विंड होता है आप वहाँ पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं
1: वो
0: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहता है, तो वो एक प्राइमरी साइन है।
1: जी,
0: किसी भी इंजीनियर
1: हवा की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है। जी, बहुत अच्छे से

0: हमें एक छवि आपने दी है, बचपन से लेकर वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
1: तो हम पवन की बातें करते हैं तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज़्यादा सावन के महीने में ही होता है।
0: जी।
1: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो 4 महीना होता है
0: जी।
1: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज़्यादा बिजली।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत है। और अब हम ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी प्रबीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ,
0: जी,
1: हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए।
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक, लगभग जिसे कह सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष के अंदर, हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने किया हुआ है, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है, उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है। तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं,
0: जी,
1: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है।
0: जी।
1: उसी के साथ

0: साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी मिलेगा और हम जो है इसको और इसी विषय पे इसी की प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया
1: जी।
0: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए। पावर प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा
1: जी।
0: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया और उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के उनका भी अच्छा हमें साथ मिला। मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थी जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी बेनिफिट्स थे उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं और शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें। ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, कैसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहां लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है। ऐसे में अगर कोई नया उद्यमी जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: जैसा डॉक्टर प्रबीर ने बताया कि आजकल जो है
1: जी
0: बिडिंग का
1: जी
0: एक तरीका अपनाया जा रहा है जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं जो उद्यमी हैं वो उसमें भाग लेते हैं
1: जी।
0: इससे पहले मैं आपको बताऊं लगभग 70% तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले भी हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
1: इन्वेस्टमेंट
0: किया है और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी
1: जी।
0: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा वहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है, बहुत अच्छी उस जगह का प्रोत्साहन मिला है, वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का जिसे बोलते हैं नौकरियां या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है
1: जी, उन्हें रोजगार मिलता
0: रोजगार
1: है, इसकी वजह
0: मिलता से। रहा है पवन ऊर्जा जहाँ कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है
1: जी।
0: और जो है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर का भी हो जाता है, तो रास्ते में कई उनको उद्यम जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है
1: जी।
0: उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है
1: जी। हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइन्स लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रबीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन चक्कियों को कभी पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्कियां अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए
1: जी।
2: तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना, बट हाँ बिजली उत्पादन थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो सकता है
1: जी।
2: क्योंकि जो पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो
1: जी
2: तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना
1: जी।
2: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है
1: जी।
2: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में

0: उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था
1: जी।
0: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इनबिल्ट है। बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है। क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा
1: जी,
0: कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है
1: जी।
0: जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है। तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मानसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है
1: जी।
0: बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है। इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है। तो ज्यादातर आज के डेट पे जो भारत में लगे हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 ही स्टेट में ही सीमित है
1: जी।
0: अभी एक दो स्टेट में और अभी काम चल रहा है जैसे कि उड़ीसा, तो वहां पे भी शायद अगले एक दो साल में आपको दिखेगा कि वहां पे भी लगा हुआ है
1: जी।
0: लग जाएगा।
1: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
0: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश
1: जी।
0: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकेंड तक होता है। तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइड्स है। तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइड्स होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइड्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा
1: जी।
0: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
1: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सर?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं
1: जी।
0: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है हम 12,000 करोड़ से ज्यादा कि पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के अलग कंट्री को निर्यात करते हैं, और जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम आयात नहीं करते। तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट या इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं
1: जी। तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है जी। मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वो अपनी ओर से योगदान करें, और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाएं?
0: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है, बट जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो यही है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है, जो 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट तक, इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500 वाट, 200 वाट, ये सब छोटे छोटे पवन चक्के भी मार्केट में उपलब्ध है। बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे
1: जी।
0: बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी, ये तीनों को लगा देते हैं तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए। तो ये संभव है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं
1: जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन सा गाना आप हमारे

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, इससे हमारी जानकारी बढ़ रही है पवन ऊर्जा को लेकर, साथ ही कुछ तकनीकी पहलू भी एकदम आम शब्दों में, साधारण भाषा में हम समझ पा रहे हैं। पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप एक साइंटिस्ट भी हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हमारे साथ हैं, उद्यमी हैं और भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से आप जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
1: ये एक संस्था है
0: जी,
1: जो जितने भी हमारे टरबाइन के निर्माता हैं, उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं
0: जी,
1: उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिलके या और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सलूशन या एक

0: निकालते हैं
1: जी,
0: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सभी जुड़े हुए हैं
1: जी।
0: मैं आपको, जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो है कंपोनेंट और ये सब है
1: जी,
0: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ताकि जो अभी बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना हम इन सब को अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं
1: जी,
0: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग की और इन सब के ऊपर नजर रखता है
1: जी।
0: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता रहे।
1: क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है भूमि अधिग्रहण को लेकर?
0: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक द्विधापूर्ण रहता है हर एक जो भी पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो है इकट्ठी साथ साथ, जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं
1: जी,
0: ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं
1: जी,
0: और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है ताकि दोनों ही टर्बाइंस का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा इसका आपस में हवा का टकराव ना हो और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो
1: जी।
0: क्योंकि बवंडर पैदा होने से हमारी मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती हैं वो थोड़ी सी हो जाती है और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता है
1: जी। तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती है।
0: हाँ देखिए, हर टरबाइन जो है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से, पर ये 2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइज की या कितनी बड़ी हम टर्बाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके,
1: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और पवन चक्कियां जो है रात भर काम करती रहे।
0: खाली यही नहीं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है
1: जी।
0: कि जिस समय जैसे सुबह 8 से 7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है, उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है, तो वो जो ग्रिड लगी है, जो हमारी तारे हैं, जो हमारे सब स्टेशन लगे हैं, उनमें वो उस बिजली को पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
0: ताकि जो खाली समय रह जाता है हमारे पवन जिस समय अच्छी नहीं मिलती उस समय सूरज मिल जाता है
1: जी। आपसे जानना चाहूंगी प्रवीर जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाइलाइट्स हमको देखना चाहते हैं, तो जहाँ पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि तनेजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं
1: जी।
2: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है
1: जी।
2: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन में भी योगदान करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा होटल्स रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी
1: जी,
2: तो पर्यटन पे भी वहाँ पे सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं

0: तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये। जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा, हम जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं,
1: जी
0: हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है, और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं। अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है, दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं, हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है, फिर वो लिस्ट बनती है। तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं। तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
1: जी,
0: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कम्प्लाई करते हैं
1: जी।
0: तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं
1: जी,
0: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं
1: जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पवन चक्की लगा है तो वे बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता
1: जी।
0: है, तो वहां पे इनफैक्ट कृषि भी होती है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है, या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी करा जा सकता है। इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहां पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं, जहां पे वो पवन चक्की खड़ा है, और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरे उपयोग में आ सकते हैं और वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है, तो वो साउंड के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए। मतलब वहां पे कोई अगर गांव है, गांव बसा हुआ है, तो वहां से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको
1: जी। लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं, समझने के लिए, या रिसर्चर्स हैं,
0: और वो सड़क से आई थिंक उसका जो हाइट होती है, टिप हाइट तक आप मान के चलिए
1: जी,
0: उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता। मतलब जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है, वहां से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि अगर कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहां पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे
1: जी। और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है,
0: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हजार्ड। वो गिरेगा भी नहीं तो, क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है
1: जी,
0: तो वहां पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी रहता है
1: जी।
0: तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहां पे लोग जाए, उसको छुए,
1: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है इनकी कितनी लाइफ होती है, और जब वो पुरानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
0: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से
1: जी।
0: कुछ पुराने टर्बाइन्स है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं, और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने के जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा, तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी
1: जी।
0: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं, इसमें जो भी मटेरियल लगती है, जिस पदार्थ से बनते हैं, उसका 85% मेटल्स होते हैं
1: जी।
0: तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं, और इसका कॉस्ट इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यूनेम मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके, और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रिइंफोर्स रेजिन से है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड हो, इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है, इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नई चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रेजिन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है, 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिस रेजिन से वो बनता है कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट
1: जी।
0: लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है, लाइक जो मैंने बता रहा हूँ स्टील लगा है, कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा,
1: बिल्कुल,
0: तो उससे कुछ ना

0: कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने वायुमंडल में छोड़ा है, तो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट
1: पवन ऊर्जा का,
0: होता है जी। तो पर्यावरण के लिए ये सबसे फ्रेंडली है
1: जी। यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है, और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है जी। तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं, और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और मंत्रालय की अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है, अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं? जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए, आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं
1: जी,
2: वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा उनके लिए डिस्काउंट अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, के एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो अपनी पवन चक्कियां लगाकर किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने मॉल्स हैं उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है वो कर सकते हैं
1: जी। तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है जी। हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में भी इसका योगदान है, और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है, और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो है वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। तो चलते चलते ओम जी, आपकी पसंद का ये गाना हमारे श्रोताओं के लिए,
2: पंछी नदिया पवन के झोंके
1: जी,
2: ये एक अच्छा गाना हो सकता है।
1: बिल्कुल, ये गाना बहुत अच्छा है, हमारे कार्यक्रम की थीम से मैच कर रहा है। पवन के झोंके जो है बहुत ही जादू का काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
0: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे, उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: अच्छा जी
1: जी प्यार दादा पता नहीं, पर अगर तुसी सोलो ट्रैवल करना चाहते हो ना तो डरन की कोई गल नहीं है। ट्यून इन किया है तुसी 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा जी होम स्वीट होम, तो मैं हाँ जी थोड़ी अपनी साक्षी थोड़े नाल। एक फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 45 साल तो लैके 55 साल दियां औरतां ने यानी कि लेडीज़ ने उन्होंने सोलो एडवेंचर जिहड़ा हैगा अपना ट्रैवल कर रही ने, यानी कि कल्ली जाके किते दूर दराज घूम फिर के आ रही ने। सो इहदे विच जिहड़े एडवेंचरल ट्रैवल्स ने उन्हां दी हिस्सेदारी करीब जिहड़ी हैगी है 50% है। तो रिपोर्ट का यह भी कहना आया सामने कि 25 साल तो घट उम्र दी जिहड़ी लड़कियां ने ना, या फिर आपां कह सकते हैं 35 तो 45 साल दी महिलाएं, मतलब जिहड़ी लेडीज़ हैगियां ने, महिलावां हैगियां ने, उन्हां दे कंपैरेटिवली सोलो ट्रिप जिहड़ा हैगा उह ज़्यादा कर रही ने। सो कई बार कुछ चीज़ां होंदियां ने सानू सोच सोच के डर लगता है, बट असल दे विच जदों वो एक्सपैरिमेंट असी अपने लाइफ दे विच करदे आ ना, ते असी अपने आप दे विच एक पॉजिटिव चेंज देखण नू मतलब फील जरूर करते हैं। शुरू शुरू दे विच जिवें सोलो ट्रिप्स तो कल्ले जाण तो जिन्ना असी डरदे हाँ, एक बार जदों असी चले जाते हैं ना फिर सानू परसनली फील हुंदा है कि हाए किन्ने साल असी वेस्ट किते, मतलब किन्ना टाइम सी साडे को। कई बार की हुंदा है बच्चियां करके असी लेडीज़ किते जा नहीं पांदियां, या हस्बैंड नू छुट्टी नहीं मिली, या घर दे विच होर चीज़ां हुंदियां ने, मतलब कोई नहीं जा रहा ते असी आप भी नहीं जा पाते। पर अगर तुहानू मौका मिल रहा है सोलो ट्रैवल करन दा ते ज़रूर जाना चाहिए। सो अजकल जे लेडीज़ की गल करिए तां ओह बहुत सारा काम करदियां ने, इंडिपेंडेंट ने, अपने

Once again, welcome back है जी, प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम ते ट्यूनिंग के तहत तुसी 102.7 FM रेनबो ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल ते इस गाने तो पहला असी तुहाडे नाल शेयर कर रहे सीगे खास जी रेसिपी दही वाले क्रिस्पी बीन्स बेसन रोल्स दी इनग्रीडियंट्स जिहड़े ने बनाउण वास्ते की सानूं चाहिए है वह सारा कुछ शेयर कर दिता सी, बट एक बार फिर तो तुहानूं दस दिंदी हाँ। सानूं चाहिए जी एक कप बेसन, अद्धा कप दही, तो एक प्याज बरीक कटिया होया, एक शिमला मिर्च बरीक कटी हुई, एक हरी मिर्च चाहिए है, अद्धा चम्मच हल्दी का, तो अद्धा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अद्धा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, तो थोड़ा हरा धनिया जिहड़ा है गार्निश वास्ते सानूं चाहिए है, तो तेल जिहड़ा हैगा सेकण दे लई चाहिए है। तो स्टफिंग की गल करिए दो उबले हुए आलू तो ये नाल ही नाल बरीक कटिया हुई फलियां बीनस जड़िया होंदिया ने बॉयल कितिया हुई होनी चाहिए ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जे तुसी चीज़ खान दे शौकीन हैगे हो तो थोड़ा जा चीज़ भी ऐड कर सकते हो, टोटली जड़ा हैगा ऑप्शनल हैगा, थोड़ी अपनी चॉइस ते है। हुण इन्नू बनाना किद्दां है, सब तो पहले की करना है आपां बेसन, दही, प्याज, शिमला मिर्च, ए सारे तेरे बेसिक मसाले आपां जिहड़ी गल कीती सी हल्दी नमक अजवाइन दी, सारिआं नू इक चंगी तरह मिला के एक थिक जिहा सी बैटर बना लेना है। तो उस तो बाद तवा गर्म करके हल्का तेल जड़ा हैगा उस तवे ते लगा देना है। तो उस तो बाद जड़ा बैटर असी रेडी किया है, इनू चिल्ले की तरह असी पूरे तवे ते जड़ा हैगा वह फैला देना है। जदों दोनों साइड क्रिस्पी हो जाएगियां साढ़े उस बैटर दियाँ, तो जदों इनू सेकना है ना, तो उदों जिहड़ी साड़ी गैस हैगी है लो टू मीडियम होनी चाहिए है, ताकि जो चिल्ला है यानी कि जो असी बना रहे हो चंगी तरह उहदी क्रिस्पीनैस जिहड़ी हैगी है रोल्स दी वो आवे।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

ने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा।

0: यानी प्यार हो गया।
1: जी प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल। कहते हैं बहुत देर तक देखती रही आज एक पेड़ को, ना जाने कितने परिंदे आए ठहरे और चले।

0: यानी प्यार हो गया।
1: जी प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल। कहते हैं बहुत देर तक देखती रही है आज एक पेड़ को, ना जाने कितने परिंदे आए ठहरे और चले गए। बहुत देर तक देखती रही आज एक पेड़ को, ना जाने कितने परिंदे आए ठहरे और चले गए। पेड़ ने कोशिश की हर बार कि परिंदों से लगाव ना हो, या उम्मीद की कि हर बार कि उनका जाना ना हो। परिंदे सहूलियत मुताबिक आते और जाते रहे, पेड़ मायूस होकर पत्ते गिराते रहे। सो जिहड़े ए पंछी हुंदे ने ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ।

जी ट्यूनिंग किया हाँ तो से 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज़ स्टूडियो की कड़ी के विच इस टाइम टाइम होया जे 1:16:55। कहते हैं कि म्यूजिक जब दिल से निकले ना तो महफिल सजा देता है। रेट्रो बीट्स का जड़ा जादू हैगा ना वह भी हर पल नूं असीं कह सकते हैं कि यादगार बना देता है। इदा का ही एक यादगार गीत अगला जड़ा रफ़ी साहब की आवाज़ के विच फ्रॉम द मूवी कर्ज़ तो रेडियो सैट पर आ रहा है जी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वीरवे सहित

बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जिया भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जिया भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

कहते हैं मोहब्बत की बातें और रेट्रो धुन का साथ हो तो दिल को यादों के और भी पास ले जाता है। बिल्कुल जी, उन्हें यादा नू होर तरो ताज़ा करते हुए अगला गीत आशा जी की आवाज़ दे विच फ्रॉम द मूवी डॉन, जो कि 1978 दे विच रिलीज़ हुई सी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो स्वीडन के दो दिन दौरे ते गोटनबर्ग पहुंचणगे। भारत ते नीदरलैंड अपने दुआले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली दे पद्धर तक वधाउण लई सहमत हो गए ने। भारत ने कहा कि होरमूज स्टेट विच व्यापारक जहाज़ों ते हमले परवानयोग नहीं ने। जनगणना 2026 तहत पंज राज्यां विच मकानां दी गिणती दे पहले गेड़ दा काम शुरू हो गया है। ते आईपीएल क्रिकेट विच अज पंजाब किंग्स दा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाल ते राजस्थान रॉयल्स दा दिल्ली कैपिटल्स नाल मुकाबला होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो स्वीडन के दो दिन दौरे ते गोटनबर्ग पहुंचणगे। श्री मोदी का यह दौरा स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टेसन के सदे ते हो रहा है। श्री मोदी के 2018 में स्वीडन दौरे तो बाद दोवां देशों विचकार संबंध खरीददार विक्रेता संबंधों तो अगाह वध गए ने। स्वीडन दौरे दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टेसन नाल दुवल्ले संबंधों के समुचे पहलुओं की समीक्षा करन अते दुवल्ले व्यापार नूं वधाउण लई सहयोग के नवे तरीकों

जी, ट्यून इन किया है तुसी 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहे मिड डे मेलोडीज़ ते मैं हाँ जी थोड़ी अपनी साक्षी थोड़े नाल। कहिंदे कि जदों रेट्रो म्यूजिक दा जादू चलता है ना ते वो कदी भी पुराना नहीं हुंदा। दिल तो निकलिया होया हर सुर जिहड़ा है कदी बेगाना नहीं हुंदा। ते तुहाडे नाल गल्लां करदे होए इह खूबसूरत जिहा सफ़र कदों अपने मतलब कह सकदे हां कि वाइंड अप करन वाले टाइम ते पहुँच चुका है। हुण वक्त हो चुका है जी तुहाडे तो इजाज़त लैण दा, मैनूं साक्षी नूं दो जी इजाज़त ते फिर अगे तुहाडे नाल जल्दी ही मुलाकात होएगी। दिल दीआं बहुत सारीआं गल्लां ने जो तुहाडे नाल फिर करांगे। टिल दैन जी अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो हमेशा ते इदां ही FM रेनबो जिहड़ा है उह सुणदे जाओ। ते अगले दोस्त जिहड़े ने स्टूडियो दे आ चुके ने ते कुछ कु देर बाद अपना शायराना अंदाज लैके अगला प्रोग्राम दिल आज शायर है तुसी करोगे जी इंजॉय। ते जांदे जांदे किशोर जी दी आवाज़ दे विच तुहाडे लई गाना प्ले करके जा रही हां जी।

अपनों से क्या शिकायत, अपनों से क्या शिकायत। बिल्कुल सही कहा जी आपने, जड़े नाल अपने जड़े हुंदे ने उन्हां नाल कादी ही ऐसी शिकायत गिले शिकवे कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार भावें जो मर्जी होवे हुंदे ते अपने ही ने, भावें थोड़े तकलीफ दिंदे ने पर अंत विच ते अपने ही काम आउंदे ने। तो प्रोग्राम तुसीं सुन रहे हो दिलाज शायर अपनी दोस्त ते होस्ट आजरिया दे नाल, ते बहुत सारे दोस्त बहुत सोहणियां सोहणियां अपनियां शायरियां साडे नाल सांझियां कर रहे ने। बड़ा मज़ा आ रहा है तुहाडी सारिआं दीआं शायरियां पढ़ के, ते तुहाडे सारे नाल जरूर सांझियां भी करूँगी। तो जिहड़े दोस्त अजे भी हिचकिचा रहे ने, सोच रहे ने कि की कीता जावे, शायरी भेजी जावे ना भेजी जावे, लिखी तो हैगी है शायरी, पसंद तो बहुत है पर सोच रहे ने कि की कीता जावे, करना कुछ नहीं है जी, फोन चकना है। तो नंबर जिहड़ा साडा हैगा 9855 10 10 27 9855 10 10 27, इहदे ते तुसीं अपनी लिखी हुई या फिर जे कोई होर शायरी तुहाडे दिल दे करीब है, कोई नज़म है, कोई शेर है, कोई कविता तुहाडे दिल दे करीब है, तुसीं साडे नाल सांझा कर सकदे हो। एक गुजारिश है कि जे तुसीं किसी होर दी लिखी हुई कोई भी राइटिंग साडे नाल सांझी कर रहे हो तो लेखक दा नाम जरूर उहदे विच लिख दिओ। सो बलविंदर सलाम, पिंड मोड़ जंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिखते हैं कि एक बार करके एतबार लिख दो, कितना है मुझसे प्यार लिख दो, कटती नहीं अब ये ज़िंदगी तेरे बिन, कितना और करूँ इंतज़ार लिख दो, तरस रहे हैं बड़ी मुद्दतों से हम, अपनी मोहब्बत का इजहार लिख दो, दीवाने हो जाएं जिसे पढ़कर हम, तुम कुछ ऐसा एक बार लिख दो। बहुत ही सोहनी कविता तुसी सानू सांझी कीती है। मोहम्मद मुजफ्फर मोहम्मद अरमान पिंड खुर्द जिला मलेरकोटला तो लिखते हैं कि कभी तुमको भी ऐसे से मोहब्बत हो तो आ जाना, किसी टूटे हुए दिल की ज़रूरत हो तो आ जाना, हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात चलता है, तुम्हारा भी ऐसा हाल हो तो आ जाना, ज़माना प्यार का दुश्मन है तुम्हें आने नहीं देगा, मगर कोई कभी आने की सूरत हो तो आ जाना, तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, तुम्हें जी चाहे तो मत ताना, तबीयत हो तो आ जाना। बहुत ही सोहनी शायरी तुसी साडे नाल सांझी कीती है। तो होर भी साडे बहुत सारे दोस्त साडे नाल जुड़े हुए ने, सानू बहुत सोहनिया सोहनिया शायरियां भेज रहे ने। तो जे तुसी हजे भी सोच रहे हो तो सोचो ना जी, अपनी शायरी सांझी करो, असीं तुहाडी शायरी दी तुहाडे मैसेजेस दी उडीक कर रहे हैं। तो फिलहाल तुहाडे लई पेश कर रही हां जगजीत सिंह होरां दी आवाज़ विच शिव कुमार बटालवी होरां दी लिखी आ गज़ल।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

वो मिले तो पूछना है मुझे, वो मिले तो पूछना है मुझे, आज भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। यूं जो तकता है आसमां को तुम, यूं जो तकता है आसमां को तुम, कोई रहता है आसमां में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये जो शायरी है बहुत ही सोहनी है, तो लिखी हुई है जॉन इलिया साहब दी, जो कि बहुत ही फेमस थे, बहुत ही उम्दा पोइट रहे ने। तो अज आप प्रोग्राम दिला शायर है विच इन्हां दी लिखिया हुई जिहड़ियां शायरियां ने तुहाडे नाल सांझियां करूँगी, क्योंकि बहुत ही सोहना इन्हां ने लिखा है। तो उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी है वो उन्हां मतलब वह भी मैं कुछ ना कुछ स्टोरीज उन्हां दीआं जो हैगियां ने तुहाडे नाल सांझियां करूँगी। सुभाष चंद्र वत्स गिद्दड़वाह तो सानू एक शेर लिखते हैं, कहते हैं कि एक रिश्ता सा खास रहता है, बस वही दिल के पास रहता है, एक गुड़िया के रूठ जाने से घर का आंगन उदास रहता है। बहुत ही सोहना शेर तुसी सानू नाल सांझा किया है। तो जिहड़े दोस्त सानू अजे भी वेट कर रहे हैं, भाई वेट ना करो, तुसी नंबर साडा हैगा जी 9855-9855-10-1027, एदे ते तुसी अपनी लिखी हुई या फिर किसी होर दी लिखी हुई शेर नज़्म शायरी कविता साढ़े नाल सांझी कर सकते हो। फिलहाल रेखा भारद्वाज होरां दी आवाज़ ते जगजीत सिंह होरां दी आवाज़ विच बहुत ही सोहनी जी गज़ल तुहाडे लई पेश कर रही हां।

सखी, तुम श्रृंगार और साहस में कभी चुनाव मत करना। तुम्हारा श्रृंगार तुम्हारा साहस है, तुम्हारा साहस तुम्हारा श्रृंगार है। और अगर थक जाओ, ना मन हो श्रृंगार का ना साहस का, तो आ जाना मेरे पास, क्योंकि प्रिय सखी तुम मुझे सदैव प्रिय हो। ते इस शेर दे नाल इस जिहड़ी सोहणी जी महफिल सजी सीगी दिल आ शायर विच, उहदा जो हैगी आ अंजाम वो करदे आं। ते जांदे जांदे एक बहुत ही सोहणी गज़ल आशा भोसले उहनां दी आवाज़ विच तुहाडे लई प्ले कर रही हां।

आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: 3 बज चुके हैं और चाय का समय हो गया है, और चाय की चुस्कियों के साथ यदि कुछ सवालों पर चर्चा भी कर ली जाए या उनका निदान मिल जाए तो चाय का मजा दुगना हो जाता है, खासतौर पर ऐसे सवाल जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। तो आज चाय टाइम में रेडियो डॉक्टर हैं आपके साथ, करेंगे बातचीत उच्च रक्तचाप और आयुर्वेद पर, यानी हाई बीपी और आयुर्वेद। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर टी दिवाकर राव, जो एक आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और उच्च रक्तचाप से जुड़े आयुर्वेदिक निदान के साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो के स्टूडियो में।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी यानी कि

0: ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कितना होना चाहिए?
1: ये सबसे सरल
0: जी
1: और एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि जो रक्तचाप है
0: जी
1: उसको उच्च तभी बोलते हैं जब वो उस इंडिविजुअल की जो लेवल से अगर वो ज्यादा हो
0: जी।
1: तो वही आपका जवाब मिल गया क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो बीपी का जो रेंज है जिसको हम कहते हैं वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं ऐसे ही कि 120/80 इतना होना चाहिए तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, जैसे 115 हो गया या 125 हो गया वो घबराना शुरू कर देगा, या 80 की जगह वो 85 हो गया या 84 हो गया या 75 हो गया, नीचे चला गया, वो घबराना शुरू कर दिया। इसलिए इसका जो है हमेशा रेंज बोला जाता है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमेशा अलग होता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जैसे आपका चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है और आपका ओल्ड एज है, इसमें वो चेंज होता रहता है। हो सकता है जो 140/90 फॉर एग्जांपल 45 इयर्स का जो आदमी है उसके लिए नॉर्मल हो, ठीक है, वो 30 साल की उम्र का जो आदमी है उसके लिए एबनॉर्मल हो। तो आप समझ गए होंगे ये हमेशा रेंज से ही चलता है। 120/80 नॉर्मली जनरली बोलते हैं मगर ये हमेशा रेंज होता है इसका।
0: तो जब तक आपके कॉल्स आते हैं हमारे पास, हम आपसे लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी, हमारा आज का विषय है उच्च रक्तचाप और आयुर्वेद। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो कॉल हम तक पहुंचा है, देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, अपना सवाल रखिए।
1: यूपी के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी, आरिफ जी।
1: जी, जैसे आयुर्वेद के बारे में आज जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब बहुत नॉर्मल सा छोटा सवाल ये है।
2: हाँ जी।
1: कि जैसे कभी बढ़ता है और कभी घटता है, तो इसका मतलब मकसद क्या होता है हमारे शरीर में, कि क्यों बढ़ जाता है या क्यों घट जाता है? और दूसरी बात ये, अगर ये हम हमेशा नॉर्मल रखने के लिए सोचें, तो आयुर्वेद के कौन से उपाय हैं जिसको हम अपना के इनका जो है अच्छा उपयोग कर सकें?
2: आरिफ जी, पहला सवाल आपके ये था कि बढ़ता है और घटता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले ये देखना पड़ेगा कि बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ रहा है आपका, उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 120 है, हो सकता है नेक्स्ट डे आपका 130 हो जाए, उसके बाद 120 हो जाए, या 140 चला जाए, फिर 120 आ जाए। ये अगर लगातार होता है, कोई आपका जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, जैसे लोगों को टेंशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, दिन भर काम में जो है लोग बिजी होते हैं, उसमें ऊपर नीचे होता है। ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। अगर नीचे जो है, जैसे 120/80 जो बोलते हैं ना, जो नीचे वाला जो 80 है, वो अगर लगातार वैसा होता नहीं है, अगर लगातार वो चेंज होता है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। बाकी आयुर्वेद में हो या एलोपैथी में हो या कोई भी सिस्टम में हो, बीपी का 2-3 बेसिक प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, एक उम्र के बाद आपकी जो है डाइजेशन पावर, जो पचाने की जो शक्ति है ना, वो खत्म हो जाती है, और कुछ चीजें अवॉइड करना चाहिए, जैसे सॉल्ट है, बहुत ज्यादा तेल, मिर्च मसाले, ऐसी चीजें। और शाम को कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए, अगर योगा कर सकते हो तो योगा करना चाहिए। ये 3 ऐसे चीज है जिससे आप बीपी से बच तो नहीं सकते, मगर दवाई जो है काफी हद तक आपके कम हो जाएंगे।
1: जी जी डॉक्टर, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया,
2: थैंक यू
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, ये थे हमारी पहली हमारे कॉलर थे, अब देखते हैं कि हमारे एक और कॉलर है, वो क्या कहते हैं। तो हेलो,
3: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: मैं महमूद अली बोल रही हूँ मैडम, एयरपोर्ट से, IGI।
0: ओके, एयरपोर्ट AGI से बोल रहे हैं आप। अपना सवाल रखिए, डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं।
3: मैडम, ये थोड़ा

0: कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये?
1: हाँ जी, आपने सही सवाल पूछा। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के अंदर एक तरह का एक फैट है, ये जरूरी भी है। बहुत सारे हार्मोन्स जो है ना हमारे, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल के एक और रूप होता है, उससे वो बनते हैं। मान लीजिए वो आप जरूरत से ज्यादा आपके बॉडी के अंदर है, वो कहीं ना कहीं ब्लड में जाके कहीं ना कहीं फंसेगा। जहां उसको रास्ता कम मिलता है ना, वहां जाके वो फंस जाता है। रास्ता कहाँ कम होती है? जैसे हार्ट है, हार्ट के ब्लड वेसल्स जो है उसकी जो विड्थ जो है, चौड़ाई, वो कम होती है, तो वहां जाके वो फंस सकता है। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उनका जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको नस बोलते हैं, अंदर जो है वो लचीलापन उसका खत्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे, तो वहां जाके ये चिपक जाते हैं। जब ये चिपकते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का वो कारण बनता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आप चिकनी वाली चीज़ें है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज है, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, इसको अवॉइड करना चाहिए।
0: जैसे हम चिकन ज़्यादा खाते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: तो इससे कोई प्रॉब्लम सर?
1: कोई भी चीज़ ज़्यादा आप खाएंगे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। उसको आप थोड़ा मात्रा आप कम करिए, आप लीजिए मगर मात्रा कम करके लीजिए।
0: तो सर इसकी पहचान कैसे?

0: उसको रास्ता कम मिलता है ना, वहां जाकर वो फंस जाता है। रास्ता कहाँ कम होती है, जैसे हार्ट है, हार्ट के ब्लड वेसल्स जो है उसकी जो विड्थ जो है चौड़ाई वो कम होती है, तो वहां जाके वो फंस सकता है। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उनका जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको नस बोलते हैं अंदर जो है वो लचीलापन उसका खत्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे, तो वहां जाके ये चिपक जाते हैं। जब ये चिपकते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का वो कारण बनता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आप चिकनी वाली चीज़ें है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज है, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, इसको अवॉइड करना चाहिए।
1: जैसे हम चिकन ज़्यादा खाते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: तो इससे कोई प्रॉब्लम सर?
0: कोई भी चीज़ ज़्यादा आप खाएंगे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उसको आप थोड़ा मात्रा आप कम करिए, आप लीजिए मगर मात्रा कम करके लीजिए।
1: तो सर इसकी पहचान कैसे होगी, मतलब क्या कोई टेस्ट कराए इसका कैसे?
0: हाँ, इसका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट ही होता है एक तरह का, आप करा सकते हैं। जिसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे टेस्ट है, उसमें एक टेस्ट ये भी है।
1: जी सर। और ये मेरे सर है ना, तो लेफ्ट साइड में आंख से ऊपर थोड़ा दर्द होता है कभी कभी बहुत ज्यादा।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ।
0: एक आंख के ऊपर है या दोनों आंखों के ऊपर है?
1: नहीं नहीं, एक ही आंख के ऊपर है, मतलब साइड में थोड़ी सी ऊपर जाके, मतलब सर पे माथे पे। कभी कभी एकदम ज्यादा
0: एक दर्द। तो पहले तो आपका उम्र आपने बताया नहीं, हो सकता है आपका 40-50 हो, तो आई टेस्ट जरूर करा लीजिए।
1: हाँ, मेरी है 40-42 समझिए।
0: हाँ हाँ हाँ, एक बार बीपी का भी टेस्ट करा लीजिए और आई टेस्ट करा लीजिए।
1: अच्छा।
2: वैसे मैं वैसे
1: कोई नशा तो नहीं करता मैं किसी भी टाइप को, मतलब आज तक बीड़ी भी नहीं पी सर।
0: अच्छी बात है। और ये दोनों आप करा लीजिए, एक तो बीपी का टेस्ट और आंखों का।
1: थैंक यू सर।
0: ओके जी।
2: डॉक्टर साहब, जहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें आँख के ऊपर दर्द होता है, तो क्या ये बीपी से जुड़ा हुआ कोई दर्द हो सकता है?
0: जनरली एक आँख में तो नहीं हो सकता, हो सकता है उनको आई रिलेटेड, विजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो।
2: जी जी।
0: तो वो कराने से पता लगेगा।
2: सर, जैसे कि इन्होंने पूछा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसी तरह का एक सवाल आया है, संदीप लिख रहे हैं गुवाहाटी से, ये पूछना चाह रहे हैं कि सर बीपी क्या है, आप इसे सिंपल भाषा में समझा दीजिए। तो मुझे लगता है ऐसे हमारे बहुत सारे लिसनर्स होंगे जो जानना चाहते होंगे।
0: ये बीपी सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो जो प्रेशर आप झेल नहीं सकते जिससे आपको नुकसान होता है वो बीपी है, जिसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इसलिए क्योंकि बीपी जिसको होता है उसको पता ही नहीं लगता है कि बीपी है मुझे। वो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कभी कभार उससे उसको लगता है कि हाँ, या कोई दोस्त बोलता है या कभी रूटीनली वो चेक करा लेते तब उनको निकल आता है हाँ मुझे बीपी है। जनरली ये पता नहीं लगता क्योंकि ऐसा कोई सिम्टम इसका होता नहीं है। हाँ, और कुछ सिम्टम्स अलग होते हैं किसी किसी में, वो जनरली आपको हेडेक हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नींद में कमी आ सकती है, और कभी कभार जो है आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं कोई काम पे। और उम्र तो है ही है, 40 के ऊपर हर आदमी को एक बार करा लेना चाहिए। ये सारे लक्षण है जिससे आपको पता लगता है। हाँ, हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, वो भी चेक कर लेना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 40 नहीं 30 साल की उम्र से ही आपको चेक कराना जरूरी है। हो सकता है, नहीं हो सकता वो अलग बात है, चेक कराना जरूरी है।
2: तो ये तो हमारे डॉक्टर साहब हैं। आज का हमारा विषय है उच्च रक्तचाप और उससे जुड़े आयुर्वेद से किस तरह से आप उच्च रक्तचाप का निदान पा सकते हैं, कैसे समाधान मिल सकता है। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर टी दिवाकर राव आज इस विषय पर हमसे बात कर रहे हैं। एक और मैसेज हम तक आया है, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हाई बीपी से बचने के लिए क्या करें, कौन सा नमक का सेवन करें और कितनी मात्रा में?
0: हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बीपी से बचना ना बचना वो तो एक अलग बात हो गई। बीपी जो है जनरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड दे आर सफरिंग नाउ, मतलब 40% लोग आजकल सफर कर रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बदल गया है। हम लोग सेडेंट्री हो गए, एक जगह बैठ के काम करते हैं, और हम लोग खाना भी बेवक्त खाते हैं और खाते भी ज्यादा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें जो पहले नहीं होते थे इंडिया में आजकल वो अवेलेबल है, वो भी हम लोग खाने लगे हैं।
2: जंक फूड
0: हो गया, स्टेल फूड हो गया, पता नहीं क्या क्या फूड्स आ गए, तो उसमें कहीं ना कहीं नमक की मात्रा है। अब नमक कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए, इसमें तो थोड़ा सा वो टेक्निकल हो जाएगा। बाकी जो ओवरऑल नमक का क्वांटिटी है, कोई भी आप ये जो बाजार के जो फूड्स ले लीजिए उसमें कहीं ना कहीं वो है, तो इनडायरेक्टली वो एक कारण हो रहा है। ऊपर से आपका जो फूड हैबिट्स है वो भी बहुत असर करता है। आपका फूड हैबिट्स ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाओगे, बहुत ज़्यादा तेल वगैरह चीज़ें खाओगे और पानी कम पियोगे, उसको पचाने के लिए आप मौका ही नहीं दोगे, बेवक्त खाना खाओगे, तो वो भी कहीं ना कहीं असर करता है। और ऊपर से जो स्ट्रेस लेवल्स है हमारे, ज़्यादातर ऑफिस आप स्ट्रेस मान लीजिए।

0: जो ट्रैफिक का, जो दिल्ली में खासकर तो ट्रैफिक का जो स्ट्रेस है, घर में भी जो स्ट्रेस होता है, बाकी वर्क कल्चर ऐसा है जहां स्ट्रेस आपको झेलना पड़ता है, ये भी एक कारण है। और सबसे आम कारण है जो इसका बीपी का, वो है उम्र। जो आपकी उम्र बढ़ती है तो नेचुरली जो ब्लड वेजल्स के अंदर जो एलास्टिसिटी बोलते हैं, जिसको लचीलापन, वो नेचुरली थोड़ा बहुत कम होता है। तो इसीलिए 40 साल के बाद हम बार बार बोलते हैं कि आप अपना मेडिकल टेस्ट करा ले और ये बीपी का चेकअप करा ले। जितना जल्दी इसको डायग्नोस कर पाएंगे उतना जल्दी आपका इलाज भी हो सकता है, आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं।
1: सर एक और सवाल आया है बिसनपुर साहिबगंज से, दिनेश गुप्ता लिख रहे हैं।
0: हाँ जी।
1: कह रहे हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ लेकिन जरा सा रनिंग करते ही जल्दी थक जाता हूँ, तो क्या कारण हो सकता है? मेरी एज 64 है।
0: देखिए आपका एज 64 है तो आपने बीपी के बारे में तो बताया नहीं, जिक्र नहीं किया गुप्ता जी। हो सकता है वो अगर है तो उसका, उसके लिए दवाई लेना आपको जरूरी है। बाकी आप थक जाते इसका मतलब ये है कि कोई और भी कारण आपको रहा होगा। तो बाकी एक रूटीन आपका ब्लड टेस्ट कराना जरूरी होता है, जिसमें बीपी का भी टेस्ट हो, ट्राइग्लिसराइड्स का भी, लिपिड प्रोफाइल का भी, और ब्लड शुगर का भी, और बाकी जितने भी टेस्ट है जो रूटीनली होना चाहिए वो आप कराने के बाद आपको पता चलेगा।
1: तो डॉक्टर साहब काफी सारे सवाल हो गए हैं, कुछ एक कॉल्स भी आ रही हैं, तो जब तक आपके कॉल्स आते हैं हमारे पास, हम आपसे लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: एक बार फिर से स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है उच्च रक्तचाप और आयुर्वेद। डॉक्टर साहब, देखते हैं हमारे अगले कॉलर क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं हरियाणा से मनोज माझी बोल रहा हूँ मैम।
2: जी बताइए, अपना सवाल रखिए।
3: मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ मैम कि डॉक्टर साहब नमस्कार सर।
4: नमस्कार जी। नमस्कार
3: मैम, आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैम, जो डॉक्टर साहब ने बताया 80 और 120, ठीक है ना, तो ये क्या एज के हिसाब से भी इसका जो भी बीपी होता है क्या?
4: बिल्कुल बिल्कुल, जो 120 और 80 जो है वो एक नंबर है, वो जनरली बीपी जो है ना रेंज होता है। मान लीजिए आपके लिए 140/90 नॉर्मल है और किसी के लिए वो एबनॉर्मल भी हो सकता है, तो हर आदमी के लिए वो अलग अलग है, इसलिए हम लोग रेंज बोलते हैं।
3: एक और सवाल है डॉक्टर साहब।
4: हाँ जी हाँ जी।
3: मेरे वाइफ का एज 49-50 के अबव है, ठीक है ना।
4: हाँ जी।
3: तो उनको कभी कभी सर में चक्कर आता है, खूब बेचैनी सा होने लगता है सर, तो क्या ये बीपी का कोई?
4: तो सबसे पहले आपको बीपी चेक करा लेना चाहिए मैडम का। हाँ, उसमें अगर कम ज्यादा है तो उसके हिसाब से इलाज फिर शुरू होगा। अगर वो नहीं है तो बाकी चीजें भी आप एक बार करा लेना, अच्छा है मेरे लिए, अच्छा रहेगा।
3: थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।
2: हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए और कहाँ से सवाल रख रहे हैं ये बताइए।
5: मैडम, मैं नीरज जैन बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
2: जी बताइए
5: मैडम, जैसे बीपी मान लो मेरी एज है 45, तो मेरा जैसे बीपी मॉर्निंग अकाउंट आता है तकरीबन 132/85।
4: हाँ जी हाँ जी, 132/85। हाँ जी हाँ जी।
5: उसके बाद सर अगर मैं 2-3 मिनट बाद चेक करता हूँ तो आ जाता है 127/125/80/70।
4: अच्छा अच्छा।
5: और जनवरी में जनवरी में मुझे कॉल हुआ था, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ये है तो मैं होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहा हूँ फॉर द दिस बीपी।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
5: तो सर मतलब इज इट दैट ओके? मीन्स
4: देखिए, आपका जो सवाल है ना उसमें ऐसा है कि नीरज जैन साहब गुड़गांव से बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो आप रिकॉर्ड करते हैं जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो डिजिटल होगा मेरे हिसाब से।
5: यस सर, डिजिटल है।
4: हाँ, तो डिजिटल में +5-10 जो है चेंज आता है, ठीक है, हर बार जैसे भी आप करोगे वो 5-10 का वो आपको

0: मार्जिन लेके चलना पड़ेगा।
1: दूसरा
0: हाँ ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, 120-30 जो कह रहे थे आप उसकी बात कर रहा हूँ। जनरली हाँ ऐसा प्लस आर माइनस होता है 5-10 वो okay. तो दूसरी बात यह है कि नीचे वाला जो है ना जो 80-85 जो रेंज में होता है वो जनरली बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है उसमें। अगर उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है तो आपका डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो एज सच आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी दवाई ले रहे हो होम्योपैथिक दवाई ले रहे हो वो आप लेते रहिए, बाकी योगा और एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत चलना फिरना आपका अगर हो सकता है तो वो करिए, और खाने का खाने पे कंट्रोल रखिए, खाने पे कंट्रोल और नमक पे कंट्रोल।
1: नमक तक तो समय कंट्रोल कर रहा हूँ, वेट भी मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरा 100 के अराउंड वेट है।
0: हाँ ओबेसिटी भी एक कारण होता है बीपी का, इसलिए उसको भी चेक करना जरूरी है।
1: हाँ तो मतलब सर अच्छा एक चीज पूछनी थी सर, ये मैक्सिमम मतलब कितना, जैसे मेरी 45 एज है तो कितना हम ब्लड प्रेशर मैक्सिमम मतलब फिगर आउट कर सकते हैं?
0: देखिए आपके उम्र के हिसाब से ना 135 के आसपास आपका रहता है, मेरे जैसे आप बोल रहे हो वो बिल्कुल आपके लिए ठीक है, नीचे 80-50 से भी है तो वो आपके लिए ठीक है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आप फ्रीक्वेंटली आप उसको चेक कराते रहिए और दवाई जो है कंटिन्यूअसली लेते रहिए।
1: हर दूसरे दिन से चेक करता हूँ, बाकी मैं सवेरे शाम होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग
0: मॉर्निंग। ठीक है उससे अगर कंट्रोल है तो आप लेते रहिए।
2: तो ये तो थे नीरज जी गुड़गांव से। साथ में सर कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं वो हम ले लेते हैं। डॉक्टर साहब लिखने वाले हैं रघुविंदर सिंह सुभाष नगर दिल्ली से, ये कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर का परमानेंट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में क्या है?
0: इसका सबसे आसान जवाब ये है कि इस दुनिया में परमानेंट नाम की चीज कुछ है ही नहीं,
2: है ही नहीं।
0: तो जो है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा या उसको संभालना पड़ेगा या उसको उसके साथ चलना पड़ेगा। बीपी जो है ये एक कोई बहुत ज्यादा ऐसी बीमारी नहीं है, ये आज के डेट में रियलिटी है, ये सब लोग फेस कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि बीपी हो गया तो बहुत कुछ हो गया, मैं ये हो गया मुझे वो हो गया, वो सब सोचना आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगा, बल्कि आप जो हुआ है उसको कैसे आप संभाल सकते हो। सबसे पहला आपका पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे बदलना चाहिए तभी आपका इलाज हो पाता है। जैसे मान लीजिए बीपी है तो आपको रेंज कितना ज्यादा है
2: कितना
0: वो
2: है।
0: हाँ वो देखना जरूरी है, क्या कमी मेरे अंदर है, क्या मैं दवाई ले पा रहा हूँ या फ्रीक्वेंट। बहुत लोग ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब लिखते हैं 20 mg और ये खुद ले लेते हैं 10 mg, मतलब उसके बाद 10 दिन के बाद फिर वो खुद ही बंद कर देते हैं। क्योंकि बीपी जब आप दवाई लोगे, एक दवाई एक गोली में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी आप दवाई ले लो 36 घंटा काम करता है। मान लीजिए वो 24 घंटे के बाद बीपी देखा तो नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा देखा तब भी नॉर्मल होगा, तो 2 दिन में उसका नॉर्मल आएगा तो लगेगा कि ये बीपी मेरा है ही नहीं, मैं खामखा इसको ले रहा हूँ दवाई, फिर वो धीरे धीरे बंद करना शुरू करते। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो डॉक्टर्स के एडवाइस नहीं मानते हैं या अपने आप बीपी की दवाई जो है
2: डॉक्टर खुद बन जाते
0: हैं। तो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा कभी मत करिए, डॉक्टर को सोच के आपको देता है दवाई
2: जी।
0: कुछ ना कुछ उस बहुत सारे फैक्टर्स को देख के आपको दवाई देता है। तो जब भी अगर आपको बंद भी करना है शिफ्ट भी करना है तो उस डॉक्टर के पास जरूर जाइए, आप बोलिए मुझे ये दवाई सूट नहीं कर रहा है, मुझे कुछ और दवाई दे दीजिए, या मैं दूसरी पति जैसे आयुर्वेद है होम्योपैथी है आजकल बहुत सारे सिस्टम्स है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। ये तो पहला आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसमें खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे नमक है जैसे हम बार बार बोल रहे हैं वही चीज, मिर्च मसाला है, बेवक्त खाना अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी चीज बहुत कम लोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, चलना फिरना घूमना, ये दिल्ली में खासकर शायद नहीं हो पाता है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तो टाइम निकालना आपका काम है, वो डॉक्टर का काम नहीं है। ये जब तक लोग नहीं समझेंगे बीपी बढ़ता जाएगा और दिक्कत आना शुरू हो जाएगा।
2: तो जब तक आपके कॉल्स आते हैं हमारे पास, हम आपसे लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: डॉक्टर साहब एक बार फिर से स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। हमारे अगले कॉलर कौन है, जानते हैं इनका सवाल।
2: हेलो
1: हेलो
2: डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पंकज यादव बोल रहा हूँ।
3: नमस्कार नमस्कार पंकज यादव जी, अलवर से।
2: सर मेरा एक सवाल था कि एलोपैथ में जो जितनी मेडिसिन है इनमें ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब कि जब तक आप लेते रहे तो तब तक आपका बीपी कंट्रोल रहता है, क्या आयुर्वेद में कंप्लीट क्योर है क्या?
3: देखिए कुछ
2: है तो मतलब कैसे कर सकते हैं उसे?
3: कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिसमें लोग दावा करते हैं कि हम लोग इसको ठीक कर देंगे, जड़ से निकाल देंगे, गायब कर देंगे, ऐसा दुनिया में कुछ होता नहीं है। बहुत सारे बीमारी 2000 साल पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो एज ए पेशेंट जो है आपका काम यह है जो डॉक्टर कहता है, जो सही डॉक्टर हो, अगर वो दवाई दे रहा है वो 40 समझे देता है, 20 समझे देता है, वो कुछ सोच, मैं अभी यही कह रहा था, ये देखो खत्म करने वाली बात जो है ये आउट ऑफ द कंटेस्ट हो जाता है इस बीमारी में। ठीक है, कोई भी चीज खत्म नहीं होता, कुछ बीमारियां खासकर कुछ बीमारियां ऐसे है जो खत्म नहीं होते, तो जो नहीं होते उसके बारे में क्यों सोचना है? मेरा सवाल ये है आपसे, जो चीज आप ले सकते हो जिससे आप ठीक हो सकते हो, जिससे आपका गुजारा हो सकता है, वो लेना जरूरी है, उसी में समझदारी है। लोग क्या करते हैं, ऐसे थॉट्स लेके जाते हैं, दवाई चेंज करना शुरू करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे लगभग 25 साल हो गए इस मतलब इलाज करते करते, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिसको अचानक पैरालिसिस हो गया, क्यों हुआ, वो दवाई छोड़ दिया, या खुद वो किसी की दवाई खा लिया, वो उसने कहा कि मैं जड़ से मिटा दूंगा, तो नुकसान किसका हुआ? डॉक्टर का तो हुआ नहीं, डॉक्टर तो वहीं बैठा है, उसका बिजनेस चल रहा है, नुकसान हुआ है पेशेंट का। तो जो चीज हमारे अंदर है जिसको जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो, जिससे आपका जिंदगी चल सकता है, दवाई से ही या एक्सरसाइज से या खाना कम करने से या कोई योगा करने से, ये सब बहुत सारे रास्ते हैं इसमें, ये सब आप कर सकते हो।
2: डेली रूटीन से हम मेंटेन कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल, कंप्लीट क्योर इसका नहीं है।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो स्ट्रेस लेवल है आप उस

0: स्ट्रेस लेवल को कैसे कम कर सकते हो, ये सोचो पहले। स्ट्रेस लेवल कैसे कम हो सकता है, जैसे ऐसे कोई एक्टिविटी आप देखो टीवी में, या हंसने वाली चीजें आप सुनो, अच्छी बातें सुनो, मॉर्निंग वॉक करो, लोगों से मिलो, शाम को घूमो, ये इससे जो है स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है। हमें जो है केवल इंसानी बात कर सकता है, एक दूसरे से बात करने से भी बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। ये भी एक तरह का इलाज है, दवाई नहीं है सब कुछ, ये भी है इलाज, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब मैं इसलिए आपसे ये सवाल किया है कि बहुत से लोग कहते हैं हम 100% ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे,
0: तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं पहले ये सेंटेंस मुझे पता था कि आप पूछोगे, इसलिए मैं पहले बोल दिया आपको कि ऐसे बातों में मत आइए, जो रियलिटी है, जो सच है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कल ये ठीक हो जाए, कल ऐसा कोई दवाई आ जाए इसको जड़ से ठीक कर दे, वो अलग बात है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कुछ हाइपरटेंशन से ऐसे होते हैं, बीपी खासकर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, वो कभी कभार वो कम भी हो जाते हैं
2: जी।
0: उस कैटेगरी में आप नहीं आते हो, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको
2: जी। जी सर, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, ये लिख रहे हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, कह रहे हैं कि मेरा बीपी 150/100 आता है जब मैं घर पर होता हूं, लेकिन हॉस्पिटल में जाके नॉर्मल आ जाता है। मैं दवाई भी खा रहा हूँ, दवाई का नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, और 49 इयर्स के हैं, तो ये जानना चाहते हैं कोई इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन।
0: 100/50 कह रहे थे,
2: 150/100
0: वो रहता है, और
2: घर पर रहता है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मल आ जाता है।
0: नॉर्मल मतलब कम होता होगा, या तो घर पे जो चेक कर रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं
2: खराबी है, मशीन में खराबी।
0: जब हाँ, यही मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो नीचे वाला जो 100 कह रहे हैं ना, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और जो ऊपर वाला वो होता है जो 150 है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जनरली ऊपर नीचे होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है घर से हॉस्पिटल जाने से इतना चेंज नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं होगी कमी
2: जी।
0: या कुछ ना कुछ ऐसा कोई फैक्टर होगा। अगर 100 है तो दवाई के साथ साथ वो कम भी होना चाहिए, अगर वो होता है कि नहीं होता है वो चीज नहीं बताया, मगर वो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जाने से कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात जाती है।
2: सर, या मोहम्मद सरफराज आलम दर्शना बाजार अररिया बिहार से लिख रहे हैं, रक्तचाप अधिक बढ़ जाने में कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां लूं, इन्होंने भी यही पूछा है।
0: हाँ, नाम बताना सही नहीं है, क्योंकि जैसे नाम बताएंगे लोग क्या करते हैं, वो दवाई लेना शुरू करते हैं। आयुर्वेद की एक और डिसएडवांटेज ये है, हर एक दवाई हर एक आदमी के लिए नहीं है। देखिए, हम लोग दोष देखते हैं, कोई वात का ज्यादा है उसके अंदर गुण, तो दवाई अलग हो जाएगी
2: जी।
0: कोई पित्त वाला है तो उसका अलग हो जाएगा, कफ वाला है तो उसका अलग हो जाएगा। तो एक पेंट ब्रश की तरह एक दवाई ले लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई दवाई होता नहीं। हाँ, लोग उसको कमर्शलाइज करने के लिए, बेचने के लिए बाजार में बहुत सारी दवाई बोलते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा, वो ही डॉक्टर ही जानता है कि किसको क्या दवाई देनी चाहिए। तो पहले आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, वो आपकी बॉडी कंस्टिट्यूएंसी देखेगा, और आपका क्या स्थिति है, आपकी उम्र क्या है, आपके वजन क्या है, आपके मेंटल स्टेटस क्या है, आपकी बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ये सब सोच के वो दवाई देते हैं। तो हर आदमी का दवाई अलग होता है। मैं एक नाम ले लूंगा कोई भी, एक्स वाई जेड। लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ना जाके वो दवाई लेना शुरू करते हैं, तो उससे उनका फायदा नहीं होगा, वो ऊपर से नुकसान
2: हो सकता है। सर, अभी आपने एक बात करी वात पित्त और कफ की, तो बीपी इन तीनों प्रवृत्तियों में भी
0: इसका डिरेंजमेंट जो होता है
2: जी,
0: जो प्राकृतिक स्थिति होती है इसकी बॉडी में, डिरेंजमेंट बहुत सारे कारण होता है। एक एज एक फैक्टर है, आपका जो लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन जिसको बोलते हैं, मतलब माँ बाप से वो आपको वो बीमारी आई है, वो एक फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। कुछ चीजें आपके कैरेक्टर वाइज भी होता है, जैसे आपको बार बार गुस्सा आता है, आप कंट्रोल नहीं पा, वो भी एक कारण है बीपी बढ़ने का। और जो ऐसी दवाई आप लेते हो, अल्कोहल टोबैको है, वो सब जो वो भी एक कारण है।
2: एक मैसेज हम तक आया है, लिखने वाले हैं एच सिंह लिख रहे हैं, कह रहे हैं मुझे डायबिटीज है और मैं बीपी की और डायबिटीज की मेडिसिन लेता हूँ, मेरी उम्र 70 साल है और मेरा बीपी की रीडिंग है 140/68। तो क्या लोअर रीडिंग सही है? एच सिंह न्यू दिल्ली से।
0: नहीं, इतना लोअर भी नहीं है जी। वैसे देखिए वही है कि आप 68 को 70 मान लीजिए
2: जी, 70
0: ठीक है
2: जी।
0: 148 को 150 मान लीजिए, तो इनका सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, रेंज में ही है। तो इनको जो है

0: स्ट्रेस लेवल्स के ऊपर सोचना पड़ेगा. स्ट्रेस लेवल्स अगर ज्यादा है तो उसके दवाएं अलग होती है.
1: जी.
0: जो डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है तो उसके लिए दवाएं अलग होती है.
1: ओके.
0: और इनका वो भी ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं बॉडी में, मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह की क्या स्थिति है, वो देखना पड़ेगा.
1: एक मैसेज आया है लखनऊ से, गिरीश लिख रहे हैं, कह रहे हैं मेरी उम्र 48 इयर्स की, 48 साल के हैं, अक्सर हेडेक रहता है, चश्मा यूज करता हूं और मेरी नाक के ऊपर हैवीनेस लगती है और लेफ्ट हैंड में लाइट सा पेन भी रहता है और खाना खाने के बाद चक्कर आते हैं और रिसेंटली राइट आई में एक रेड स्मॉल स्पॉट बन गया है. तो क्या ये सब भी बीपी के सिम्टम्स
0: के लक्षण हो सकते हैं? क्योंकि जैसे ये कह रहा है रेड स्पॉट्स जनरली आंखों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं बीपी की समस्या हो सकती है. इनको तुरंत दिखाना पड़ेगा, एक बार चेक करा के उसके बाद बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी अगर है तो. मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, इनको
1: हो सकता है. तो एक कॉल और ले लेते हैं डॉक्टर साहब. हेलो.
2: हेलो, नमस्कार मैम.
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए.
2: मैं सुनील कुमार बांका, बिहार से बोल रहा हूँ मैम.
1: बिहार से सुनील कुमार जी. हाँ जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल रखिए.
2: मेरा सवाल ये है मैम कि टॉपिक से थोड़ा सा हटके है कि शुगर में आयुर्वेदिक से माने आयुर्वेदिक में बचने के लिए क्या माने.
1: सुनील जी, आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा हाई बीपी से रिलेटेड. तो जिस वक्त हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे ना, तब यदि आप अपना सवाल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है जी.
2: ठीक है मैम, अगर डॉक्टर साहब को थोड़ा सा पसंद है तो दे सकते हैं जवाब, नहीं तो कोई बात.
0: देखिए, शुगर जो है बीपी ये इंटरलिंक्ड है, मतलब अगर किसी को शुगर है तो बीपी भी हो सकता है. ठीक है. और उस शुगर का बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे दवाएं हैं बाजार में, चाहे आप एलोपैथिक ले लीजिए, आयुर्वेदिक ले लीजिए, कोई भी होम्योपैथिक दवाई ले लीजिए. बेसिक शुगर का जो इलाज ये होता है कि शुगर को कंट्रोल में रखना. तो शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे लोग ये गलत सोचते हैं कि दवाई खाने से कम होगा, ऐसा कभी नहीं होगा. शुगर कंट्रोल करने के लिए तीन रास्ते हैं. एक रास्ता ये है कि आपको खाने के ऊपर ध्यान देना, जो आप इंटेक ले रहे हो, जो खा रहे हो, उसको कंट्रोल में रखना, ये पहला काम ये है. दूसरा काम ये है कि उसको खर्च करना, जितना आप खा रहे हो उसको खर्च कैसे करोगे. खर्च आप मॉर्निंग वॉक करके कर सकते हो, इवनिंग वॉक करके कर सकते हो, जिम जा सकते हो, कोई भी योगा वोगा कर सकते हो, इससे वो खर्च होता है.
1: जी.
0: जो खर्च होने के बाद जो बचता है, अगर वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, तब उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है. हम लोग इसको उल्टा सोचते हैं, पहले हम दवाई लेते हैं उसके बाद खाना जो है सोचते हैं कि कंट्रोल करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने दवाई ले ली इसलिए इवनिंग वॉक जाने की जरूरत नहीं है. हम उल्टा सोच के बीमारी को बढ़ाते हैं.
2: जी धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका.
0: हाँ जी, हाँ जी.
1: हेलो.
3: हेलो
1: जी, बताइए आपका सवाल.
3: हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली वीकली अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहता हूँ मशीन के थ्रू. तो ब्लड प्रेशर मेरा ऑलमोस्ट नॉर्मल ही आता है, मतलब 125 टू 68 समथिंग. लेकिन उसमें ब्लड पल्स करके थर्ड रीडिंग होता है, वो 58 आता है. कुछ लोगों ने बोला कि बहुत कम है वो, तो उसका कुछ प्रॉब्लम है? मेरा एज 40 है.
0: नहीं, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका जो रेंज जो आप बता रहे हो ना, वो उसके हिसाब से आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है. आप एक काम और कर सकते हो, आप हर रोज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार चेक करो.
3: हफ्ते में चेक करते हैं, मतलब हाँ, हर संडे
0: हफ्ता पंद्रह दिन में आप एक बार चेक करिए. उसी रेंज में है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप एक्सरसाइज करिए या इवनिंग वॉक करिए, खाने में थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए, बाकी आपका सब सही है.
3: सर ये जो ब्लड पल्स है ये बहुत कम होना प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है?
0: नहीं, वो ज्यादा टेक्निकल हो गया, उसके बारे में आप मत सोचिए.
3: अच्छा, क्योंकि डॉक्टर जो उसका नॉर्मल रेंज बताते हैं वो 68 समथिंग बताते हैं.
0: हाँ, प्रॉब्लम यही है कि लोग जैसे नॉर्मल रेंज के नीचे ऊपर चले जाते हैं ना, उनका वैसे ही ब्लड प्रेशर
1: बढ़ जाता है.
0: तो बहुत कुछ देखिए, डॉक्टर को सोचने के लिए मौका दीजिए. आपको सोचना है बस, नॉर्मल है तो आपको खुश रहना है, खुश रहने से ही आपका बीपी कम हो जाएगा.
3: जी. सर एक और क्वेश्चन था छोटा सा मेरी वाइफ के लिए है.
0: हाँ जी, हाँ जी.
3: उनका 38 है, उनका ब्लड प्रेशर यूजुअली हाई रहता है, जो मशीन बताता है वो हाई लिख के बताता है, बट वो 138 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक जो है वो अराउंड 72-75 है ऐसा.
0: अच्छा अच्छा, वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. उनका स्ट्रेस लेवल है तो उनको योगा होगा जो घर पे कर सकते हैं उसको वो सिखाइए मैडम को, या इवनिंग वॉक कर सकते हैं तो वो कराइए, उसके बाद देखिए अगर कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा.
3: जी.
1: तो ये तो थे हमारे सवाल, हम फोन लाइंस के थ्रू भी आपसे ले रहे हैं और साथ साथ व्हाट्सएप पे भी चल रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है बीच में थोड़ा सा यदि म्यूजिकल ब्रेक भी मिल जाए तो हमारे लिसनर्स के लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और हमारे डॉक्टर साहब से भी जो लगातार सवालों के जवाब

0: एक बार फिर से रेडियो डॉक्टर में आप सभी लिसनर्स का स्वागत। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आया है, लिखने वाले हैं कि डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बंदा बीपी की गोली लेता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? मैंने ये सुना है कि किसी का बीपी या शुगर की गोली यदि लग जाती है तो उसे ज़रूर लेनी पड़ती है, दूसरी या तीसरी टेंशन भी लग जाती है।
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है मैडम।
0: लिखने वाले हैं जालंधर से राज।
1: हाँ राज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, आप जालंधर से हैं, अच्छी बात है। देखिए, ये जो बीपी और शुगर, ये ऐसा है, ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए आपको या तो दवाई लेनी पड़ेगी या कंट्रोल में रखने के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा, जैसे फूड कंट्रोल या आपका जो है एक्सरसाइज वगैरह करना है, एक्टिव रहना है, ये सब स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है। ये सब कुछ जो है ना, आप अकेले विदाउट मेडिसिन कभी कभार कर नहीं पाते हैं। कभी कभार मेडिसिन इज द ओनली ऑप्शन या जो मेन ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। ऐसे भी कुछ बीपी होते हैं जिसमें मेडिसिन लेना ही पड़ता है। तो बीपी से बचने के लिए, बीपी से बहुत सारे ऐसे बीमारी होती है जो बाद में बहुत नुकसानदायक होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रोक हो गया आपको, किसी एक अंग जो है पैरालाइज हो गया, वो ज्यादा मतलब खतरनाक चीज है या साइड इफेक्ट खतरनाक चीज है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा क्या सही रहेगा। साइड इफेक्ट, हर दवाई के साइड इफेक्ट होता है,
0: वो कुछ भी साइड इफेक्ट होते हैं।
1: हाँ, जो जरूरत नहीं आप ले रहे हो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट, दूसरी तरह का इफेक्ट होता है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स के बारे में आप ज्यादा ना सोचे, डॉक्टर जरूर उसके बारे में जानते हैं, डोज भी उसी हिसाब से वो लोग एडजस्ट भी करते हैं, उससे बचने के लिए कुछ और भी दवाई कॉम्बिनेशन आपको देते हैं। तो दवाई अगर आपको जरूरत है, आपके बीपी उसी से कंट्रोल होता है, तो आप आंख बंद करके वो दवाई मेरे हिसाब से लेना चाहिए।
0: एक कॉल आई है हम तक। हेलो, हाँ जी बोलिए।
2: हेलो,
0: हेलो जी बताइए।
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताइए आपका सवाल बताइए।
2: मैं जीएस सेठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को नमस्ते। डॉक्टर
1: नमस्ते जी,
2: काफी कुछ डिटेल में बता दिया, मैं चाहता हूँ कि 4-5 टिप्स दे दो आप, ताकि टेंशन ना हो बीपी बढ़ने से। बीपी जो है वो तो रहना ही है। हाँ जी,
1: हाँ जी, हाँ जी, आपका उम्र नहीं बताया सर। हाँ
0: हेलो,
2: हेलो
0: जी, अपनी उम्र बताइए।
1: अपनी उम्र बताए नहीं आपने, उम्र एज।
2: एज है 64 प्लस है। अच्छा। और मेरा बीपी रहता है 95, 130, 140।
1: ठीक है जी, आपके उम्र के लिए सही है। सबसे पहला काम आप ये करिए, सवेरे उठिए, वॉक करने की कोशिश करिए, अकेले नहीं, या तो आप अपने साथ किसी को ले जाइए, फैमिली मेंबर को, अगर नहीं है तो आपके दोस्त गण होंगे आसपास, उनसे जरूर आप 1-1.5 घंटा बात करिए। ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस अगर कोई भी चीज कम करता है वो यही चीज है। आपके दोस्तों से मिलिए, बातचीत करिए, और आपका रूटीन एक्टिविटी जो भी है, आपको जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसको आप जरूर करिए, और आप टाइमली खाना खाइए, खाना टाइमली खाना, और मिताहार जो बोलते हैं ना, जो आहार जिस आपके लिए जो सही है, या जो मात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी उतना ही खाइए जितना आपको जरूरत है, उससे ज्यादा मत खाइए, और नमक मिर्च मसाला का जरूर आप ध्यान रखिए। आप योगा कर सकते तो योगा करिए, अगर बीपी अगर बढ़ता है तो दवाई जरूर रेगुलरली लीजिए, और उसका पांचवा ये मेरा एडवाइस है कि उसका डोज आप अपने आप से कम मत करिए।
0: सर, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आया है, सीता देवी जी लिख रही हैं, 70 साल की इनकी उम्र है, इन्होंने कहा है कि एलोपैथिक मेडिसिन लेती हैं हाई बीपी के लिए पिछले 4 साल से।
1: हाँ जी।
0: तो ये इस दवाई को डिसकंटिन्यू करना चाहती हैं, तो आप प्लीज सजेस्ट कीजिए कि डिसकंटिन्यू करने का क्या मेथड है।
1: देखिए, डिसकंटिन्यू करने का 2-3 मेथड से, पहला मेथड ये है कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपने कारण नहीं बताया, आपको कोई दिक्कत हो रही है उससे या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आपको दिक्कत कर रहा होगा, ये मैं मान के चलूंगा। तो सेकंड ऑप्शन ये बचता है कि अल्टरनेटिव कोई दूसरी दवाई लेना, वो उसी सिस्टम का क्यों ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उस सिस्टम को ही छोड़ना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद और होम्योपैथिक में जा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी दवाई है, आपका पहले डॉक्टर साहब चेक करके जो भी कारगर दवाई होगी आपके लिए वो जरूर देंगे।
0: सर, सवाल अब हमें यहीं खत्म करने पड़ेंगे क्योंकि वक्त बहुत ही थोड़ा सा बचा है, लेकिन

0: चलते चलते एक बहुत जरूरी सवाल है कि ठंड का मौसम और हम जानते हैं कि उच्च रक्तचाप की शिकायत ज्यादा आ जाती है, तो उसका निदान क्या है? और जिन्हें नहीं भी है ये प्रॉब्लम, उन्हें भी किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में बता दीजिए।
1: तो विंटर में ज्यादातर क्या होता है, आपका रूटीन एक्टिविटी कम हो जाते हैं, जो जैसे हम लोग सवेरे घूमते वो नहीं हो पाते, और दिन कम हो जाता है, 5:30 बजे यहाँ अंधेरा भी हो जाता है, तो शाम को भी हम बाहर नहीं निकल पाते। तो उसके बाद जो विंटर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम ज़्यादा खाते हैं,
0: जी
1: ड्राई फ्रूट्स में आपका जो है वो नमक होता है, बहुत सारी चक्की वक्की टाइप की चीज़ें खाते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: उसमें गुड़ चीनी विनी होता है, जो खाना भी ओवर ईटिंग भी हो जाती है।
0: जी
1: ये दो मेन कारण है, उसके साथ साथ नमक तो आप लेते ही हो, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो और टाइमली खाना नहीं हो पा रहे, और घर ज़्यादातर आप घर में रहते हो, तो उसके वजह से आपको बीमारी जो भी है एग्जिस्टिंग है वो बढ़ सकता है, और अगर नहीं है तो आ भी सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपको टाइम मिलता है आप बाहर निकले, एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, और ये सब चीज़ें हैं उसको सही मात्रा में लें।
0: डॉक्टर साहब ने आज बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, उच्च रक्तचाप और आयुर्वेद से जुड़े हुए। तो यदि आप भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव, उचित खान पान करते हैं और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, तो आप अपने रक्तचाप को कंट्रोल में कर सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित किसी भी सुझाव या फीडबैक के लिए आप हमें इस ईमेल पर लिख सकते हैं, healthairdelhi@gmail.com, healthairdelhi@gmail.com।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मजाल तो मुझसे करे सवाल, तेरी छुट्टी करा दूं, तेरा तख्ता उड़ा दूं, अरे बेमौत ना मर तो अपनी ही फिक्र कर, बुरा हर काम मेरा कयामत नाम मेरा, मैं चुटकी से मचल दूं, मैं जूते से कुचल दूं, जुल्म से मेरा रिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता, नहीं कोई मेरा सानी, तू मांगे गाना पानी, हो काला नाग हूँ मैं तो जलती आग हूँ मैं, मिटा कर खाक कर दूं, जला कर राख कर दूं।

0: हाँ जी
1: चलो ये तो चलो कोई नहीं, हम तुसी भी तो जवाब नहीं दोगे है ना, मतलब
0: मुश्किल जहा लगता कि
1: मुश्किल तो कोई नहीं है, तो आपां नूं लगदा हुंदा मुश्किल कुछ नहीं हुंदा जी। अच्छा मैं सवाल बदल देनी हाँ, इदा मैं जवाब नहीं दूंगी, साडे जिहड़े अगले कॉलर होणगे हुण उन्हां नूं मैं पुछूंगी, ये मैनूं किसे कॉलर तों ही मैं चाहुंदी कि मैनूं जवाब मिले, बड़ी सौखी जी बुझारत है तुहाडे तों। चलो एक सौखी जी होर पुछ लैंदे हाँ,
0: अच्छा जी।
1: तुहाडे नाना जी दा इकलौता दमाद इकलौता जवाई तुहाडा की लगा?
0: नाना जी का
1: इकलौता
0: वो
1: जवाई,
0: मेरा डैडी लगा जी।
1: सही क्या जी, सही जवाब दिता,
0: सही दिता ना जी।
1: सही जवाब
0: चलो
1: दिता
0: एक
1: जी,
0: तो बुझ लिया मैं।
1: एक बुझ लिया, एक जरा तुसी नहीं बुझिया, असी हुण अपने अगले कॉलर नूं पुछांगे।
0: जी ठीक है जी।
1: गाना दस दो जी, केड़ा सुनोगे?
0: गाना हरजीत हारमन ने बड़ा बढ़िया बोलिया जी। कुंड कढ के गिद्दा पाउंदी सी, पहचान
1: आए हाय,
0: नी झांजर तो बलिए।
1: वाह जी वाह, तुसी भी इदा झांझ तो पछाणिया कदे किसे नूं?
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: किन्नू पछाणिया,
0: कभी कभी पहचान लईदा
1: किन्नू
0: जी।
1: पछाणिया?
0: ये ना पूछो जी, ये गुप्त आ गा दा।
1: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए,
0: थैंक यू जी।
1: थैंक यू जी। सो एक बुझारत रह गई है जी, तो साढ़े जो कॉलर्स ने इस बुझारत से अड़ जाते हैं। बुझारत यह है जी, मैं रिपीट कर देनी हाँ, कि दो प्यो ने तो दो पुत ने, पर बंदे तीन ने ही सारे, तो ये किदा है? अपने अगले कॉलर नू ही बुझारत पूछांगे, अपने जवाब थोड़ा जहा चाह चू पियो कॉलर, अपना दिमाग दिमाग थोड़ा चलाओ, दिमाग दियाँ बत्तियां चलाओ, तो फोन करो साढ़े नंबर पर जो कि है जी 0181 2341 174 01 8 1 2 3 4 2 1 7 4।

0: प्रीति हुण तां वज गई है ट्रेन दी विसल ते हुण हो गया साडे नैक्सट सैगमेंट दा टाइम
1: ते अपनी जिहड़ी स्टेशन ते गड्डी है ओह वी आ चुकी है अपने नवे वर्ड दे नाल। अज दा वर्ड भी कुछ खास ही है, सुनिया ते कई बार है लेकिन यूज एज ऑलवेज कट कीता है ते अज ओही वर्ड दी गल करांगे असीं।
0: जी दोस्तों, अज दे वर्ड एक्सप्रेस ते बैठ के असीं चलने आ साडे नैक्सट वर्ड रीबूट दी तरफ। वर्ड बहुत ही खास और बहुत ही कूल है, एकदम जेन ज़ी वर्ड। रीबूट दा मतलब हुंदा है किसी चीज़ नूं दोबारा तो शुरू करना,
1: अपने आप नूं रिफ्रेश करके एक नवी एनर्जी दे नाल एक काम नूं दोबारा शुरू करना। मतलब क्रिटीना एक चीज़ मैं ना नोटिस की है कि अपनी लाइफ दे विच ही आपां सम टाइम इक्को ही काम करदे होए ना बोर हो जाने आ। बट काम भी जरूरी है लेकिन उसे नूं ही रीबूट किया जाए तो उन्होंने ही होर एक्साइटिंग बनाया जाए तो तुसी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो उसे काम नूं।

0: जी दोस्तों, तो सी ट्यून इन की तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र प्रोग्राम चल रहा युववाणी ऑन एफएम रेनबो। ते इस दे नाल ही सानू साडे नेक्स्ट कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां दा शो च स्वागत करदे हां। हैलो,
1: हां जी, सत श्री अकाल मैम।
0: हैलो, तुहाडा युववाणी प्रोग्राम दे विच बहुत-बहुत स्वागत है। अपना नाम दस दिओ।
1: मैं पाली प्याला जिला हुशियारपुर मैम।
0: जी, ते तुसीं केड़ा गाना सुनना चाहोगे
1: मैम? नूरा फिर दा ला दिओ, यार दी गली।
0: जी, आकाशवाणी दे। अच्छा, पहले मैनूं ये दसो, तुसी साडा प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो हुण तक?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम।
0: ठीक है, साडे नाल आकाशवाणी ते जुड़न लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
1: ठीक है, थैंक यू मैम।
0: जी, तो दोस्तों तुसी भी सानू स्टूडियो दे विच कॉल कर सकते हो, अपनी फरमाइश दा गाना साडे तो प्ले करवा सकते हो। साडे स्टूडियो दा नंबर है 0181-3342-174।
2: अपनी जिहड़ी फरमाइश है तुसी फेसबुक मैसेंजर ते भी दे सकते हो। हुणे जाओ फेसबुक मैसेंजर ते आकाशवाणी जलंधर सर्च करना है ते अपनी फरमाइश, अपना नाम सेंड करने है सानू।
0: इस दे नाल ही दोस्तों हुण मैं तुहाडे लई प्ले करन जा रही हां नूरा सिस्टर्स दी आवाज़ दे विच यार दी गली।

0: जी दोस्तों, गाना बहुत ही वधिया है, लेकिन थोड़ा जो मूड जो है थोड़ा थलिन नहीं चला गया, एकदम मेलो जा हो गया है कि नहीं प्रीति?
1: कोई नहीं, हुन जरा थोड़ा होर वधिया कर दिने आ, जाने जाने कुछ वधिया ते करके जाना है।
0: जी तो दोस्तों, फरमाइश आई है नितेश शर्मा दी, भारती कुमार दी, ते गाना सुनना चाहते बादशाह। अरे ग्रुप फरमाइश आ रही है अज, ते गाना सुनना चाहते हैं बादशाह दा, तां असीं प्ले कर रहे हैं नाले प्रॉपर पटोला, क्योंकि मैनू और प्रीति दोनों ने गाना बहुत ही पसंद है। असीं भी डांस करने वाले हैं, तुसीं भी डांस करना है, तुहाडे लई पेश है गाना।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com या newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

से किशोरदा होने की कह के गए ने कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो सब तो वधिया फेवरेट लाइनें हैं इहदे विच कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। सो लोगों का काम होंगे कुछ ना कुछ कहना, तो साडा काम होंगे कि लोगों को इग्नोर करके अपनी दिल की आवाज़ सुननी, अपनी दिल की आवाज़ में फॉलो भी करना, अपने जिहड़े सपने ने उन्होंने चेज़ करना, उन्होंने पूरी करने की कोशिश करनी। तो अज असी अपने आप में प्रोमिसिज कर रहे हैं। सो कुछ प्रोमिसिज जो रह गए ने वो मैं तुम दस देनी कि अज आप अपने आप में प्रोमिस करते हैं कि असी अपने आप में माफ़ कर देंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को फिर भी असी माफ़ कर दें कि ना कि, पर जिथे कि साढ़े कोई गलती हो जाती है ना, तो असं अपने आप में माफ़ करना भुल जाते हैं। सो अज आप अपने आप में प्रोमिस करते हैं कि असी अपने आप में माफ़ करा। अज तो अपना जोड़े अपने फेलीयरस है तो फेलीयरस तो डरते हैं, उन्होंने फेलीयरस तो डरन की जगह असी उन्होंने फेलीयरस तो सीखना शुरू कर देंगे। सो एक प्रोमिस ये होर करा, अज तो असी थोड़ा घट डरेंगे, थोड़ा ज़्यादा जीवांगे, तो जिंदगी गलवक्कड़ी पा के कहेंगे लव यू जिंदगी। सो उम्मीद कर दी कि तुम अज का प्रोग्राम इंजॉय किया होगा। तो साढ़े जे अगले आर्जे ने स्टूडियो के आ गए ने अपनी बहुत सारे किस्से कहानियां लेके, तो समा मैनू बाली इजाजत नहीं दे रहा। सो तुहानू अलविदा कहूँगी, तो जान लगी हाँ बहुत ही घेंट जहा वधिया जहा अपबीट वाला गाना सानू सुना के जा रही हैं नेहा कक्कड़ होरां दी आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया।

बिल्कुल जी, राही नू चलना ही पैना है, क्योंकि जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज खत्म हुई सी सारे नु लगन लग पे कि भाई हुन असी टॉम क्रूज नू किथे देखांगे। मतलब वी ऑल आर सो मच ऑफ फैंस ऑफ मिशन इम्पॉसिबल सीरीज ना, कि जो उदा लास्ट पार्ट जो लास्ट ईयर आया तो सब का दिल कितने ना कि टुट गया सीगा। तो एवरीवन लाइक कि यार मिशन इम्पॉसिबल इज ओवर, टॉम क्रूज का एक्शन जिहड़ा सीक्वेंस है वो सारा का सारा हुण खत्म हो जाएगा, वेयर वी विल फाइंड हिम अगेन एंड अगेन। तो मैं दसदा कि जल्दी ही टॉम क्रूज में तुसे वापस वो एक एक्शन सीक्वेंस के नज़र आएगा। तो वो हैगा जी टॉप गन 3। जी हाँ, मैवरिक की टॉप गन 3 जी है वो अनाउंस हो गई है, तो ये टॉम क्रूज जो है वो वापसी कर रहे हैं। तो इस मूवी की तीसरी सीरीज हो तीसरी जी मूवी हैगी इस सीरीज की होएगी, तो जोड़े भी टॉम क्रूज फैनस है उन्होंने एक्शन के फैन है, सो ऑल आर एक्साइटेड। तो दस दिए कि इस फ्रेंचाइजी ने अपनी जी सफलता है उसको काफ़ी हद तक जो है इंजॉय किया है, तो हूँ इसी सफलता दोबारा पुनन वास्ते दोबारा इसनों क्रिएट करने वास्ते उन्होंने अपनी जी तीसरी सीरीज हैगी उसको अनाउंस कर दिता है। तो दस दिए कि फिल्म की शुरुआती तैयारी जी है वो शुरू हो चुकी है, तो स्टूडियो स्क्रिप्ट के उत्ते तेजी के नाल काम कर रहा। हालांकि हाले फिल्म की जी ऑफिशियल डेट हैगी उसनों अनाउंस नहीं किया गया कि कदों रिलीज़ की जाएगी, लेकिन मनिया जा रहा है कि टॉम क्रूज एक बार फिर तो पीट मैवरिक मिचेल के किरदार के नज़र आएंगे। इसी दौरान वो हैलीकॉप्टर तो लंदन पहुँचे, तो सारी की सारी जी मीडिया सी सारे सारे उन्होंने फैन से उन्होंने इस अंदाज़ में एक बार फिर तो इंजॉय कर रहे थे। तो टॉम क्रूज बिंग अ टॉम क्रूज उन्होंने जी एंट्री होंगी वो हमेशा ही जिदा बॉलीवुड के अक्षय कुमार अपनी एंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रैंड बनाने की कोशिश करते, सेम टॉम क्रूज का स्टाइल है कि वैन एवर ही इज़ डूइंग एन एंट्री तो हमेशा अपनी एंट्री नू ग्रैंड ही बनाते हैं। तो फैनस ने इस एंट्री नू इस तरीके जुड़िया कि टॉप गन 3 की जी हैगी है उस दे नाल जुड़ी एंट्री हो सकती है, तो उन्होंने तैयारियां शो करने का तरीका हो सकता है। तो

दिया है कि टॉम क्रूज अपने रियल स्टंट्स और हाई ऑक्टेट एक्शन जिहड़ा है उहदे लिए जाने जांदे ते इसी करके टॉप गन फ्रेंचाइजी जिहड़ी हैगी है कि इसनों एक काफ़ी ज़्यादा वड्डा बजट जिहड़ा हैगा वह देखा जा रहा 2022 विच रिलीज हुई टॉप गन मैवरिक दुनिया भर दे विच रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके गई सी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के उत्ते $1.4 billion तो ज़्यादा का बिजनेस किया सीगा और इस फिल्म ने टॉम क्रूज़ नूं एक बारी दोबारा तो एक्शन स्टार जिहड़ा सीगा वो बनाता। दस दिए कि फिल्म दे विच सब तो खास रहा सी उन्हां दा एरियल एक्शन सीक्वेंसिस ते इमोशनल स्टोरी टैलिंग। खास तौर पर टॉम क्रूज़ का जिहड़ा प्रैक्टिकल स्टंट्स हैगे उन्हां दी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई क्योंकि CGI की जगह असली फाइटर जैट्स और रियल फाइटिंग ट्रेनिंग का इस्तेमाल जिहड़ा सीगा इस मूवी दे विच कीता होएगा। तो हाले तक अगर इस फिल्म की कहानी बारे गल की जाए तो कोई ज़्यादा डिटेल्स जिहड़ियां हैगियां उह सामने नहीं आया, लेकिन अगर हॉलीवुड मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असीं देखिया तो फिल्म जी हैगी मैवरिक दे लेगेसी नूं ही अगे वधाएगी। तो इहदे नाल नाल इस फिल्म दे विच कुछ एक युवा पायलट जिहड़े हैगे आ उह जुड़नगे तो उन्होंने आस पास कहानी भी जिहड़ी हैगी आ उह रिवॉल्व करेगी। तो फैनस उम्मीद कर रहे कि फिल्म दे विच वड्डे तो वड्डे या ज़्यादा तो ज़्यादा एरियल स्टंट्स और इमोशन मूवमेंट्स जिहड़े हैगे उह देखण नूं मिलणगे। तो हुणे तो ही टॉप गन 3 जिहड़ा हैगा उह सोशल मीडिया उत्ते ट्रेंड जिहड़ा हैगा उह करन लग पिया। तो दस दिए कि 62 साल की उम्र दे विच टॉम क्रूज़ लगातार वड्डे तो वड्डे एक्शन प्रोजेक्ट्स जिहड़े हैगे वो कर रहे हैं। तो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ तो बाद हुण टॉप गन 3 नूं लैके उन्होंने एनर्जी उन्होंने डेडिकेशन जिहड़ी है काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच है। तो हॉलीवुड दे विच वो एक्टर्स हैगे है गिने चुने एक्टर्स दे विच एक एक्टर है जिहड़े अपने स्टंट खुद बिलीव करना पैंदे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही टॉप गन 3 की जी रिलीज डेट हैगी है उन्होंने जिहड़े मेकरस हैगे अनाउंस करेंगे तो फैनस नूं इस चीज़ में इंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो देखिए मैं कहना कि कुछ तो खास हॉलीवुड दे विच भी पक रहा हैगा और गल्लां बातां लैके मैं चला जाऊंगा फिल्मी दुनिया दे विच दसांगा की नवा आ रहा की नवा नहीं आ रहा। तद तक तुसीं इंजॉय करो प्यारा जो ट्रैक दे उस पर मिलते हैं और प्यारी जी गल्लां बातां दे नाल।

वैसे तो अक्षय खन्ना नो धुरंधर दी रिलीज तो बाद काफी ज्यादा अचानक पसंद करन लग गया जान लग पाया कि मतलब एवरीवन फील्स लाइक कि यार अक्षय खन्ना वो टैलेंट है जिन्होंने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो एक्चुअल जो बहुत बड़ी गल है कि अक्षय खन्ना वो टैलेंट जेन्युइनली बहुत बड़े रहे हैं जिन्हें अगर तुम कॉमेडी टाइमिंग का हलचल देख लो या फिर और अदर प्रियदर्शन की मूवीज़ देखोगे, हंगामा देखोगे, यू विल फिगर आउट कि वो जिन्हें बेहतरीन तरीके दे नाल कॉमेडी करते हो उन्हें ही बेहतरीन तरीके दे नाल लव सीन्स हो गए या फिर एक्शन सीन्स हो गए या सीरियस सीन्स हो गए, वो हर किरदार नू बड़े ही खूबसूरत तरीके दे नाल करते हैं। तो अगर तुम 36 चाइना टाउन देखे हो, उन्होंने डिटेक्टिव का किरदार इन्ने खूबसूरत तरीके दे नाल निभाया, वो जिहड़ी सहजता हैगी अगर विलन के तौर पर उन्होंने रेस देखी जाए या हमराज देखी जाए तो फिगर आउट करोगे कि ही इज सुपर्ब एज एन एक्टर। लेकिन कहते हैं कि हर एक किरदार का हर एक कलाकार का अपना वक्त होंगे। धुरंधर तो बाद अक्षय खन्ना नू वो जिहड़ी पहचान है वो दोबारा मिलनी शुरू हुई। तो अक्षय खन्ना के बारे बहुत सारे किस्से जिहड़े सीगे वो नवे नवे लोग कहन लगे, गल्लां करन लगे, दसन लग पे उन्हां दे बारे कि वो किन्ने ज़्यादा खास शख्स है। तो अक्षय खन्ना की इसी खासियत बारे एक इंटरव्यू दे विच बड़ी ही खूबसूरत गल जिहड़ी हैगी वो सामने आई। तो यह गल जिहड़ी कही सी यह कही हैगी है अमित बहल जी ने, उन्होंने एक इंटरव्यू दे विच सिद्धार्थ कनौर नूं दस्या कि अक्षय खन्ना जिन्हें बेहतरीन कलाकार है उस तो भी बेहतरीन इंसान है। उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए किस्से का जिक्र किया। तो यह कि फिल्म का सगा ए तो उन्होंने नहीं दसा, लेकिन किस्सा जोड़ा से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सगा। उन्होंने मुताबिक अक्षय खन्ना की एक मूवी की जी शूटिंग सी वो हो रही थी, तो जिन्हें स्टार एक्टर से उन्होंने 5-star होटल के ठहराया गया, तो जिन्हें जूनियर आर्टिस्ट से उन्होंने 3-star होटल के रख्या गया। तो एक दिन सारे एक्टर्स ने डिसाइड किया कि लंच जिहड़ा हैगा वो सारे दे सारे असी इकट्ठे करांगे, ते उस तो बाद ही असी शूटिंग तो निकलांगे। ते एक करैक्टर जिहड़ा सीगा वो उस टाइम जिहड़ा 3-star होटल दे विच रुकिया होया सी जूनियर आर्टिस्ट सीगा, वो क्योंकि उस टाइम 5-star होटल दे विच सीगा, ते जो तो लंच अनाउंस होया तो वो भी लंच करन वास्ते उत्थे सारे एक्टर्स दे नाल पहुँच गया। ते जो तो लंच चल रहा सीगा तो करैक्टर आर्टिस्ट ने बफे दी प्लेट दे विचों एक प्लेट जिहड़ी सी वो चक ली, तो उन्हों यह करते एक प्रोड्यूसर की एक रिश्तेदार महिला सी, उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर नूं कहा कि फटाफट जाके उस जूनियर आर्टिस्ट नूं उस प्लेट नूं लैन तो मना करे, तो उन्हों कहे कि उसका खाना इत्थे नहीं है। यह गल सुन के वो जिहड़ा एडी सीगा वो फटाफट उस जूनियर आर्टिस्ट कोल पहुंचा। जब तक उत्थे पहुंचा उसने प्लेट ले ली सी, प्लेट दे विच खाना पा लिया सीगा, तो पहला निवाला जिहड़ा सीगा वो हले मुंह दे विच पाया ही सीगा। ते इन्ने नूं उसने एडी ने आके कहा कि इत्थे खाना तुसी नहीं खा सकते क्योंकि तुसी इत्थे नहीं ठहरो। तुसी इमेजिन करो इन्ने सारे एक्टर्स दे विच अगर तुसी प्लेट दे विच खाना पाया तो तुसी पहला निवाला मुंह दे विच पाओ तो तुहानू कोई आके कहे कि तुसी खाना इत्थे नहीं खा सकते, वो किन्ना ज़्यादा एम्बैरसिंग हो जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अक्षय खन्ना ने यह जब चीज़ जिहड़ी सी होंदे देख ली, उसी मूवमेंट अक्षय खन्ना यूजुअली फिल्म सैट्स के उत्ते ज़्यादा गल नहीं करते या ज़्यादा किसी ना कोई खास इंट्रैक्शन नहीं रखते से, लेकिन उन्होंने अपना सब्र खो दिता। उन्होंने उस एडी नू उसी टाइम काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार लाई, तो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म जिहड़ी हैगी ना वो प्लेट गिनन या प्लेट घट या वध होने दे नाल वधिया नहीं बनती है, पिक्चर वधिया बनती है लोगों की दुआवां दे नाल। अगर कोई क्रिएटिव काम जिहड़ा हैगा कर रहा हैगा तो अगर तुसीं उसकी दुआवां नहीं लै सकते घट्टो घट उहदे मुँह तो निवाला या उसकी बदुआ जिहड़ी हैगी वो बिल्कुल ना लो। तो अक्षय खन्ना उस टाइम इन्ने ज़्यादा गुस्से दे विच सीगे कि फिल्म दे प्रोड्यूसर दी ओह रिश्तेदार जिन्हें उस खाना खाण तो मना कीता सीगा, किसी दी इन्नी हिम्मत नहीं हुई कि अक्षय खन्ना दे सामने उस टाइम चूं वी कीती जावे। तो अक्षय खन्ना ने वो प्लेट

रणनीतिक पाईवाली दे पद्धर तक बधाउन लई सहमत हुए हन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन दे दो दिना दे दौरे ते गोथनबर्ग पहुंच गए ने। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट विच व्यापारक जहाजों ते हमले प्रवान योग नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने हुन एक दिन में 256.4 गीगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग नू सफलता नाल पूरा कर लिया है। पंजाब विच भी चोने दी रुत दौरान बिजली की मांग ज्यादा होने का अनुमान। गुरदासपुर हैंड ग्रेनेड मामले के संबंध तीन व्यक्ति गिरफ्तार। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने सहायक अंदोलनों को पिंडा के विकास और समाजिक मजबूती का अहम आधार करार दिता। पंजाब में 105 स्थानक संस्थावां लई 14-26 मई को पर खरड़ दी चोणां मुलतवी करने संबंधी निर्देश जारी। सरकार ने कहा कि सीबीएसई 12वीं जमात की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली ने मुलंकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निरपक्षता को बताया। आज विश्व हाइपरटेंशन पाओ ब्लड प्रेशर दिवस मनाया जा रहा है। सो इस दिन आली हुन तक दी एफएम न्यूज हेडलाइंस इत्थे समाप्त होंदी है। मिलते हैं इस ब्रेक दे उस पर।

कुछ होर बदले ना बदले, लेकिन पंजाबियों का जरा टाइम दसन का अंदाज है ना, वह कित नहीं बदल सकता। मतलब उन्होंने टाइम लैके कैलकुलेशन है वो अपनी ही अलग है। जो भी कोई पंजाबी कह दे ना कि 2 मिनट च पहुँच रहा, समझ लो बंदा हजे नहा के कपड़े प्रेस करके रस्ते च एक दो दोस्त नू मिल के फिर आएगा, है कि नहीं है। सो यह 2 मिनट का असल च इमोशनल टाइमिंग होंगी है, साइंटिफिक तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। नालों पंजाबियों ने एक गल जी होर खास बना देती है ना कि बच्चे कहते हैं कि अजकल प्राइवेसी चाहिए हैगी है, तो पंजाबी पेरेंट्स उन्होंने इस प्राइवेसी नू दो चपेड़ा मारते हुए कहें कि चल पहला प्राइवेसी वाले रूम नू साफ करके आ, प्राइवेसी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये असी बाद विच देखांगे। सो पिंडा दे विच जे बंदा घर तो बाहर निकले ना तो 10 लोग पहुँचते 10 लोग पूछ ही लेंदे है हाँ बई किधर नू, तो जो शहर के बंदा 10 साल बाद भी वापस आवे ना तो पड़ोसी पूछता है तुसी इत्थे ही रहिंदे हैगे हो। सो जो डिफरेंस है ना पिंडा ते शहर दा, यह अक्सर सानू देखने नू मिलता ही मिलता है। तो अगर तुसी पंजाबी वैडिंग दे विच चले जाओगे तो भाई उत्थे व्याह दे विच दो चीज़ा तो पक्कियां हुंदियां ने हुंदियां, एक डीजे दा लाउड होना ते दूजा रैलेटिव्स दा पुछना उन्हें तुहाडी वारी कदों है। कदी कदी मेरा भी दिल करता है कि कोई बुजुर्ग जो इतना पुछता है ना मैनू कि हुण तुहाडी वारी कदों है, मैं भी उन्होंने तो पूछ ही लिया करा हुण तुहाडी वारी कदों है कि नहीं है। सो बंदा जड़ा है ना स्वाद दे नाल गुलाब जामन भी नहीं खा सकता हैगा। सो पंजाबियों के अगर ड्रीम्स की गल की जाए ना तो पंजाबियों के दो ड्रीम्स सब तो फेमस ने, एक कैनेडा जाना, दूजा कैनेडा वाला रिश्तेदार के घर फोटो खिंचाना। मनते हो कि नहीं मनते हो? सो तुसी भी दसो पंजाबियों नू पंजाबियों के घर दे विच पंजाबियों की लाइफ के विच तुहाडे नाल किहड़े खास गल्लां रही हैं। अगर तुहाडा कोई पंजाबी दोस्त है, तुसी पंजाबी नहीं हो क्योंकि साढ़े जो लिसनर है राजस्थान तो भी मिलते, गंगानगर तो भी मिलते हैं या पंजाब तो बाहर के भी मिलते, तो अगर तुहाडा कोई पंजाबी दोस्त रहा है तो तुसी मैनू दसना हैगा कि कोई इदा का पंजाबी दोस्त आ, कोई इदा का प्यारा जहा किस्सा, मैंने 9855101027 के उत्ते शेयर करो। तो इस ही हूँ मैं यह मेरा पंजाब जरा है वो समेटन की इजाजत दो क्योंकि वक्त जरा है मैं ज़्यादा इजाजत नहीं देता कि मैं थोड़े होर इस मुद्दे के उत्ते गलत कर पाव। लेकिन कोई गल नहीं जी, यह प्रोग्राम जरा है सिर्फ इतने मुक रहा है, मैं तुम्हें मिलूंगा जी इस प्रोग्राम के उस पास 40 संडे पूरे हफ्ते दियाँ स्पोर्ट्स अपडेट लैके।

समा हो गया जी रात दिन 9 ते हुनवारी एफएम न्यूज हेडलाइंस थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के तीजे पड़ा ते स्वीडन के गोथनबर्ग पहुंच गए ने। नवी अते नवीन योग ऊर्जा बारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन की अगुवाई वाली नवी केरलम सरकार कल तिरुवनंतपुरम में सौं चुकेगी। सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं जमात दीआं परीक्षावां विच ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली

बिल्कुल जी, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। दिल चाहता है, एक्चुअल चाहे ही कहना चाहता है तो अनुसार अनु कि दिल चाहता है नो सिर्फ और सिर्फ तुहाडे नाल प्यार है। तो इसी करके थोड़ी फरमाइश है किसी नू लैके अगले एक घंटे वास्ते दिल चाहता है पूरी तरह तैयार है। सो तुसी करना की है, कुछ नहीं करना, 9855101027 यानी कि 9855101027 उत्ते तुसी पुराने हिंदी गीतां दी या पुराने पंजाबी फिल्मों के गीतां दी अपनी फरमाइशा जिहड़ियां हैगियां मैनू भेज सकते हो। फरमाइश दे नाल अपना नाम, अपना पता, तो थोड़ी जी पेशेंस भेजनी है। मतलब एक बार मैसेज करता थोड़ा मैसेज पढ़ूंगा दैट आई विल मेक यू श्योर। बस तुसी बार बार मैसेज नहीं करना है, क्योंकि तुसी कई बार मैसेज पहला भेजा होंदा लेकिन तुसी बार बार मैसेज करते हो तो मैसेज थोड़ा उपर चल जाता। सो जस्ट बी पेशेंट, यह करके तुम मैं भेज दो। तो अगली जिम्मेदारी पूरे दे पूरी मेरी, रात 10 बजे तक महफिल का किस्सा इसी तरीके चलता रहेगा। तो शुरू कर दें इस प्यारी जी महफिल में फरमाइशा दे इस किस्से नाल। तो पहली फरमाइश जी मैं लैन जा रहा हूँ मेरठ कैंट तो दिग्दर्शन और कविता गौड ने की है। इन्होंने लिखा है कि फिल्म क्रिमिनल का गाना तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए प्ले कर दो। लो जी बिल्कुल, मैं इस गाने को लेके आ रहा। तो इस दे नाल ही मैं कुछ एक अपने दोस्त है वह जरूर जोड़ना चाहूँगा, जी आर पॉल तो पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर तो। इस तो अलावा पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। नाल है गया जी साढ़े मोहन प्यारे बूटा मंडी जलंधर तो, लखा सिंह बंसीलाल संधू तेजा मोहरी अंबाला तो। इस तो अलावा साढ़े नाल जुड़े है जी सिरसा हरियाणा तो हिमांशु सेठी, ते नाल है गया जी साढ़े कोल रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। नाल है गया जी साढ़े कोल गांव लौगर ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब तो स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह।

बिल्कुल जी, चाहिए तो सिर्फ इतना सा कि आप हमारी फरमाइश पे कोई गाना बजाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही शायरी कर जाता हूँ मैं। मजाक कर रहे हैं जी, फरमाइश आता किसी ने लेके चल दो। अगली फरमाइश चढ़ी आई है कि जी मजनू का टीला, तो फरमाइश करने वाले ने कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा और सतना एमपी, तो उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, इन्होंने फरमाइश की है फिल्म हम किसी से कम नहीं दे गीत क्या हुआ तेरा वादा। लो जी बिल्कुल जी, वादा तो मेरा यही है कि आपां तुहानूं ट्रैक सुनाने हैं, तो इसी वादे दे नाल कुछ होर नाम जोड़ लैने हैं। धनौरी तेले वाला तो निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयना बाबू, इन्हें लिखे आदरणीय आरजे जी, आदाब नमस्कार, कोई भी गीत आपका पल खुशियों से भरा हो। लो जी बिल्कुल नाल है गया जी साढ़े को करणवीर हाउस पुंचो खैंचिया बठिंडा पंजाब, तो नमस्कार जी। प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंपू एकम दमन और अभिजोत जो मैसेज हैगा वो आया हैगा। नाल है जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज आया हैगा। साढ़े कोल होर मैसेज आया जी रजाक मुहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान, इन्होंने मैसेज किया हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो। इस अलावा मैसेज आया जी सरगो गाँव हांडी खेड़ा जिला सिरसा तो, राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा जी का। नाल है गया जी साढ़े कोल ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहाँ, आजाद नगर लक्स हरिद्वार तो लिखे आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, हम आपके आप हमारी फरमाइश पे किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लो जी थोड़ा शुक्रिया मैं कबूल कर दें। कृष्णा पार्क दिल्ली तो मैसेज आया जी सुखविंदर सिंह चौड़ा ते सिटी दीवाना दा ते नाल है गया जी गांव फरासी जिला हिसार तो ही राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार ते पुष्पेंद्र कुमार, किसी भी की फरमाइश जी है वो की है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का मैसेज है। लिखा माई रेडियो माई लाइफ, लिखा दिल चाहता सुप्रेम नमस्कार जी आप कैसे, और मैसेज की तना नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो। इसके अलावा मैसेज आया सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर, सनी मनी, काका बिट्टू लाडी, मोहन मास्टर जनक नगर जलंधर तो। इस अलावा पहाड़गंज मुल्तानी टांडा तो मैसेज करने वाले ने अनुल मोहन, उषा मोहन, टिलो नायक, तो कैथल हरियाणा तो मैसेज आया जी साढ़े कोल मधु नायक जी का। नाल है गया जी साढ़े को दतरेंगी भाटापुरा छत्तीसगढ़ तो, हीरा मनी वर्मा, पारस मनी वर्मा, पुष्पेंद्र मनी वर्मा और नोखे लाल वर्मा। एक और मैसेज जरा मैं जोड़न जा रहा वो हैगा जी अमरपुरा फजल का तो, पवन लिंबा जी जो है इन्हों का जो है वो मैसेज आया है। तो लास्ट मैसेज जो मैं इस टाइम जोड़न जा रहा इसने रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत और गुरशब सिंह राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा तो मैसेज किया है। तो इन्होंने सारे की मिली जुली फरमाइश को जोड़ के मैं लेके आ रहा जी हम किसी से कम नहीं मूवी का टाइटल ट्रैक क्या हुआ तेरा वायदा, मोहम्मद रफी से सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ के गाया। तो अपनी फरमाइश मेरे रात 10 बजे तक शेयर कर सकते, नंबर है जी 9855101027279855101027। यानी कि 9855101027। तो फरमाइश का किस्सा लेकर चल रहा है थोड़ा प्यारा जो दोस्त दिन दना दिन आरजे सचिन।

जी वादा और कसम और इरादा सब लेके मैं जुड़ गया वापस ते फरमाइश आई है अगली चेड़ी वो आई है जी अनार कली बाजार चकराऊं तो सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा काव्या मल्होत्रा भाई सुचा सिंह पाठक ते विनोद पुरी जी इन्होंने लिखा है जी फिल्म धड़कन दे गीत दुल्हन का चेहरा सुहाना लगता है गायक मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर लो जी बिल्कुल मैं लेके आ रहा हूं ये गायक जुड़े हैगे इन्होंने गलत लिख के भेजते हैगे नाल लिखा जी दुआओं में याद रखना लो जी बिल्कुल असं तो दुआओं के किदा याद नहीं रखेंगे एडे प्यारे दोस्तों साढ़े इस तो अलावा साढ़े को फर्म नाम आए हैगे है जी वह हैगे जी गाँव कलाना भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो विक्रम सचिन सतीश योगेश और युद्धव इस तो अलावा मैसेज करने वाले ने गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो नाल साडे जोड़दे हैगे है जी पिंड मूलियां वाली प्यार भरी नमस्कार मैं आप जी का 55 साल का पक्का स्रोता विनोद कोठपाल प्रवीण काठपाल हनी दीक्षा जन्नत काठपाल

श्री मृदि कृष्ण धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान, आंचल कुंज पर्व, प्रवीण धीमान, चिराग धीमान, रजत धीमान, राजेश धीमान लिखा है। सचिन जी नमस्कार, हमें आपकी इंतजार रहती है क्योंकि आपका प्रोग्राम पेश करने का ढंग बहुत अच्छा है, आपकी तेज आवाज में प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आज दूर संचार और सूचना समाज दिवस है, हमें इस देश को मनाते हुए टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है और आज की युवा पीढ़ी को इसी तरह से इसमें रुचि लेकर उन्नति करनी है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है जी धीमान साहब, तुसी जो भी गल कुछ लिख के भेज दो, बड़ी ही इनफॉर्मेशन वाली होंगी, बड़ी ही नॉलेज वाली होंगी, तुसी वन ऑफ माई फेवरेट जिहड़े लिसनर है गयो, ते कुछ तुसी प्यार दी गल्ला, कुछ तुसी तारीफ तो शब्द कहंदे हो, तो कहंदे ना कि प्यार दे नाल तां तुसी रब नूं अपने नाल जोड़ जांदे, फिर इंसान की चीज़ हैगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे तारीफ भरे शब्दां दा, ते उम्मीद करदा कि ऑल इंडिया रेडियो दे जिन्ने आरचे हैगे उन्होंने सुन के तुहानूं उन्ना ही स्वाद आंदा होएगा, ते हर किसी नूं तुसी यही प्यार भरे शब्द जिहड़े हैगे जरूर शेयर करते होगे। इस तों इलावा जी साडे कोल आया जी शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभ प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, फरमाइश करता सी जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र तो, नाल हैगे जी साडे कोल आदर्श नगर जलंधर, आदर्श नगर मलौट पंजाब तो, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा लिखे आदरणीय मेजमान जी नमस्कार, कोई भी गीत सुना दीजिए। धन्यवाद लो जी, बिल्कुल असी बिल्कुल सुनावांगे तुहानू। इस तों इलावा वट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेश करते को सादर नमस्कार फरमाइश करने वाले ने सादुल शहर राजस्थान तो, राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। लो जी आ मिली जुली फरमाइशां दे विच मैं एक नाम होर जोड़ लेना, हनुमानगढ़ फजिलका तो मैसेज आया नज़दीक पास स्टैंड, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, इन्हें दी मिली जुली फरमाइश लैके मैं हाजिर हो रहा जी दिल गीत दिल फिल्म दे इस गीत नूं, तो इंजॉय करते रहो ते अपनी फरमाइशा मेरे 9855100207 9855100207 ते रात 10 बजे तक भेजते सकते हो। स्टूडियो के टाइम होया जी 9:40।

अगली फरमाइश है जी, सादुल शहर राजस्थान, तो राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, फिल्म कभी कभी, आवाज़ मुकेश गीत के बोल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो जी इस फरमाइश के नाल ही मैं लेके आ रहे हैं जी कुछ एक होर प्यारे जे दोस्त जिन्होंने सानू फरमाइशा कीतियाँ है। इन्होंने कीता हैगा जी साढ़े कोल गोविंदपुरी सीकर राजस्थान तो, दातर सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का मैसेज हैगा। नाल साढ़े कोल मैसेज हैगा जी हितेंद्र दास जी का, असम तो मैसेज किया हैगा इन्होंने। नाल ही साढ़े कोल मैसेज आया हैगा, हैगा मैसेज जी साढ़े कोल मरमरहा दरवाहा एटा तो, नबी हसन अबासी, शहनाज अबासी, नवेद हसन अबासी, सुहेल हसन अबासी, रसीद वारसी, अनम अबासी, यशफ वाजी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी थोड़ा शुक्रिया तो मैं एक्सेप्ट कर लिया है। ना साढ़े को हनुमानगढ़ फजल का तो रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा ने जरा मैसेज हैगा वो किया हैगा। तो इसी फरमाइश के बीच मैं कुछ होर नाम जोड़न जा रहा जी। VPO हथुर तहसील जगरावन डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो मैसेज आया है जी, अमरदीप सिंह ते सिमरजीत कौर दा। इस अलावा पहाड़ गुंज मुल्तानी टांडा तो मैसेज अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, कैथल हरियाणा तो मधु नायक, इन्हों का मैसेज मैं पहला भी पढ़ लिया लेकिन इन्होंने फिर तो दोबारा मैसेज किया। लो जी इस अलावा मैसेज करने वाले उत्तम नगर दिल्ली तो बोतराज खोराल, कमला राणी, गीतिका खोल खोरवाल और भानु प्रकाश। नाल है जी साढ़े को चक पंच MD पत्रोड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, इन्होंने मैसेज जो है वो किया है। नाल आया साढ़े को पिंड टानी

रेखा सिंह जलालाबाद पश्चिमी तो रेशम सिंह सवाना संदीप सिंह रमनदीप सिंह सोमा संजना करना निशान सवाना इन्होंने जो मैसेज हैगा वह किया हैगा सानू नाल ही मैं एक होर जोड़ रहा जी मैसेज करने वाले है मोहम्मद नाम इन्होंने नहीं लिख के भेजा हैगा तो कोई गल नहीं जो उसी मैसेज लिख के भेजेगा ही बहुत वही गल हैगी है नाल हैगा जी सो पिंड हीरा वाले जिला फसलका तो सुभाष गुदारा बिमला गुदारा इंदु पार्वती हिमांशु गुदारा सत श्रीकाल सचिन जी प्रोग्राम दिल चाहता है लाइव सुन रहे हैं पिछले संडे नू प्रोग्राम पेश नहीं होया सी मैंने लग्या अज भी छुट्टी ना होवे कोई गल नहीं जी तुसी पिछले हफ्ते मिस कर गए आप इस हफ्ते तुहाडी जिहड़ी हाजरी हैगी है वह लगवा दित्ती हैगी है तो उम्मीद करते हैं कि अगले एतवार भी तुसी अपनी हाजरी जरूर लगाओगे तो सिर्फ एतवार ही नहीं बाकी वीकडेज़ दे विच भी जिन्ने प्यारे दोस्त दिल चाहता लैके आते थोड़े प्यारे आर्जिस जिन्होंने तुम बहुत पसंद करते हो बहुत ज़्यादा प्यार देंगे हो उन्होंने नाल भी अपनी हाजरियां जड़ियाँ है वो लगाओगे जरूर लगाओगे तो तद तक मैं ए सारे दोस्तों की मिले जुले फरमाइश में लैके मुकेश की आवाज़ के कभी कभी मूवी का ट्रैक लैके जुड़ रहा हूँ।

शाम गजल के इस महफिल में आपका दोस्त आरजे सचिन आपका स्वागत करता है। कुछ कहानियाँ, कुछ प्यारी सी गजलें और कुछ जिंदगी का सबक सिखा जाने वाली बातें। शुरू करते हैं इस महफिल को इस प्यारी सी कहानी के साथ। एक लड़का रोज स्टेशन पर बैठकर लोगों को देखा करता था। कोई भाग रहा था, कोई रो रहा था, कोई हंसते हुए भी अंदर से टूटा हुआ था। लेकिन उस लड़के के दिल में कई सवाल थे। वो लड़का था रोहन। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? रोहन ने कहा, बाबा जिंदगी भी समझ नहीं आती, कभी खुश करती है तो कभी रुला देती है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिंदगी किताब जैसी होती है, हर पन्ना समझ नहीं आता लेकिन आखिर

तक पढ़ो तो कहानी खूबसूरत लगती है। फिर उसने धीरे से कहा, कभी धूप कभी छांव लिखती है जिंदगी, हर रोज नया अध्याय लिखती है जिंदगी। मत सोच कि तेरे हिस्से गम ही आए हैं, मुस्कुराने की वजह भी तो देती है जिंदगी। रोहन चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद परेशानी ही जिंदगी नहीं होती, उम्मीद भी तो उसका हिस्सा होती है। शामे गजल के इस महफिल में, उम्मीदों की इस महफिल को लेके मैं चल रहा हूँ अगली आवाज़ की तरफ।

एक बार राहुल की पुरानी खड़ी टूट गई थी। वो उसे फेंकने ही वाला था कि अचानक उसके बेटे ने उसे ये करते हुए देखा तो कहा कि पापा क्या हुआ? तो राहुल ने कहा कि बच्चे घड़ी खराब हो गई है और खराब घड़ी घर में नहीं रखते क्योंकि ये वक्त नहीं बताती। तो बेटे ने बड़े ही मासूमियत से कहा, पापा ये दिन में दो बार तो सही समय बताती है ना? राहुल मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि इंसान भी ऐसा ही होता है, किसी में लाख कमियां हों लेकिन उसमें कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। कमियों से डर कर आईना मत

बदल, वक्त के साथ बस नजरिया बदल। हर इंसान में कुछ खास होता है, तो एक बार अपना देखने का तरीका तो बदल। शाम गजल की ये महफिल इसी तरह चलती रहेगी रात 10:30 तक।

एक छोटा सा चाय वाला हर सुबह मुस्कुराकर चाय बेचता था। एक बार राज ने उससे पूछा, इतनी मुश्किलों में भी खुश कैसे रहते हो? तो चाय वाले ने जवाब दिया, साहब दुख तो सबके घर आते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मेहमान की तरह रखना सीख लिया। और फिर हंसते हुए बोला, गम अगर ठहर जाए तो बोझ बन जाता है, हंस दो तो किस्सा बन जाता है। जिंदगी आसान नहीं होती जनाब, मगर मुस्कुराओ तो रास्ता बन सा जाता है। राहुल चाय पीते पीते सोच में पड़ गया, शायद खुशी अमीरी में नहीं सोच में होती है। ये सोचते सोचते उसे अपने बाबा की कही हुई वो कहानी याद आ गई। एक बार आंधी में एक पेड़ पार पार झुक जाता था। पास खड़ा दूसरा पेड़ बोला, तू इतना झुकता क्यों है? पहला पेड़ बोला, जो झुकना सीख जाता है वो टूटता नहीं। ठीक वैसे ही इंसान भी, जो वक्त के साथ खुद को बदल लेता है वो मुश्किलों से कभी हारता नहीं है। थोड़ा झुकना भी जरूरी है जिंदगी में, हर बात पर अगर अच्छी नहीं होती। चल जाते हैं अक्सर वही लोग जिनके अंदर नमी नहीं होती। चाय पीते पीते और दादाजी की ये बात सोचते सोचते राहुल मुस्कुरा दिया। जिंदगी कितनी अजीब है ना दोस्तों, हम सोचते हैं कि शायद हम इसे पूरी तरह से समझ गए हैं, और फिर अगले दिन कोई पन्ना पलटता है और हमारी सारी समझ कहीं पिछले पन्नों में खो के रह जाती है। मुश्किलें हमें जिंदगी का बहुत बड़ा पहाड़ लगने लगती हैं, लेकिन इतनी मुश्किल जिंदगी ना कल थी ना आज है और शायद ना कल होगी। जरूरी है आपके नजरिए की, एक सकारात्मक नजरिए की। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ शाम गजल की इस महफिल को अब मुझे समेटने की इजाजत दीजिए। इस गजल के उस पार मैं मिलता हूं आपके साथ कुछ और गीतों के साथ, एक प्यार का नगमा है मैं।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

खुशियाँ जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। इसी कहानी में कुछ एक नगमों की महफिल लेके अगले आधे घंटे के लिए आपका दोस्त आरजे सचिन आपके साथ जुड़ गया। सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।